ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 हो चुकी हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: संस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों के पश्चात आइए आपको सुनवाते हैं हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम। विविध

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार, आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यम नैव चिंतयेत, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो वर्तमान काल के अनुसार कार्य करते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 211। सुबह 6:45 और

संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर, भाग सुनिएगा आज छठा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के।

त्रिवेणी सुबह 8:15 से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत सुनिएगा लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो। दिन में 12 हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। दोपहर 1 सुरीला सफर और दोपहर 2 त्रिवेणी सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से।

दोपहर 3 बजे से आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। नाट्य तरंग सुनिएगा दोपहर 3:30 से। नाटक पोस्टमैन का पहला भाग के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद पी एस कृष्णस्वामी, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे पिटारा के अंदर बॉम्बे टॉकी सुनिएगा, इसके अंदर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग सुनवाएंगे आपको। छाया गीत का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन। विशेष जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से, इसे प्रस्तुत कर रहे समाज सेविका साहित्यकार सुधा मूर्ति, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले, इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा जिज्ञासा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटक गुलाब की पंखुड़िया भाग 1, लेखन सुरेंद्र कांत का, निर्देशन मुमताज शकीब। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से। छायागी सुनेगा रात 10 बजे से, आलेख एवं स्वर जयप्रकाश मीणा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, और ढलती जाए रात 10:30 से।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की छठी कड़ी आज हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, ख्याल गायन में तबले पर जो संगति की जाती है और जो तालों का उपयोग होता है, खासतौर से तीन ताल और एक ताल,
2: हाँ जी,
1: तो शुरुआती दौर में संगीतकारों की ये ताल बड़े पसंदीदा रहे हैं।
2: जी हाँ,
1: इसके बारे में आप कहेंगे।
2: हाँ, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत में जो संगत के लिए जो ताल चुने गए हैं,
1: जी,
2: जैसे ख्याल गायन में तीन ताल में ख्याल होते हैं, एक ताल में ख्याल होते हैं,
1: जी जी,
2: कुछ झपताल के भी ख्याल है, तो ये ताल जो है, इन तालों का प्रयोग फिल्मी गीतों में भी हुआ है। तो ये जो ताल है, ये ताल जैसे अभी ख्याल की संगत के लिए एक ताल हम लोग जो बजाते हैं,
1: जी,
2: तो एक ताल में जो है उसमें विलंबित एक ताल,
1: जी,
2: तो विलंबित का मतलब ये है कि दो मात्रा के बीच वाला फासला बड़ा किया है, उसको और भी बड़ा किया तो वो अति विलंबित हुआ, दो मात्रा के बीच वाला फासला कम होता गया तो वो मध्यलय, और भी कम हुआ तो वो द्रुतलय। ये जो है, ये फासला मतलब एक गणित है और उसी गणित के तौर पर वो ठेका उसका बनता है। अभी एक ताल का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, तो एक ताल तो है दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना दिन दिन। अब ये ख्याल में विलंबित इसको बजाते हैं, तो मैं अति विलंबित में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विलंबित किस तरह से बजा

0: मतलब ये जो है धिन धिन, ये इतना जो अवग्रह है दो मात्रा के बीच में
1: जी,
0: तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए
1: जी,
0: तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना सम और काल का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है
1: जी जी,
0: तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है। सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, ये मुझे सम पर आना है
1: जी जी,
0: तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक साथ। तो ये जो है ये एक ताल वाला गणित है। तो ऐसे ही सारे ताल है, झपताल है, रूपक है, तीन ताल है, इसमें विलंबित में ख्याल गायन होता है और मध्यलय में जो है उसमें फिर छोटे ख्याल होते हैं और मध्यलय में ही हमारे फिल्मी गीत जो है वो उसमें उनका आविष्कार हुआ है। तो ये मतलब अलग इसलिए है क्योंकि 12 मात्रा के ताल में गीत को ढालना और उसकी खूबसूरती रखना
1: जी,
0: तो ये एक तरह से चैलेंज होता है और वो चैलेंज जो है वो संगीतकारों की उनकी प्रतिभा है कि उन्होंने उसको बाखूबी लोगों में प्रस्तुत किया है
1: जी। तो एक ताल की खूबसूरती जिस गीत में देखने को मिलती है
0: जी,
1: वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है?
0: केतकी गुलाब जुही
1: चंपक बन झूले बसंत।

0: हर फिल्म का गाना है।
1: भीमसेन जोशी जी, पंडित जी उनकी,
0: और मन्ना दा का स्वर भी इस गीत में है, और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे।

0: एक ताल में निबद्ध बसंत बहार फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे के स्वरों में, संगीतकार शंकर जयकिशन। रविंद्र जी, प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में,
1: जी
0: उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: आपकी राय क्या है?
1: दस मात्रा का झपताल जो है
0: जी,
1: मतलब दस मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है काल है
0: जी,
1: मतलब झपताल जो है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी
0: जी।
1: अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है दस मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है
0: जी,
1: फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है, तो ये जो सम काल का गणित होता है इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत।
0: हाँ,
1: इसलिए भी इस चीज को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, और जो भी बने हैं सब लाजवाब है।
0: बेशक झपताल में निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए।
1: वैसे तो कई सारे गीत

0: है
1: जी,
0: आवाज देके हमें तुम बुलाओ,
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत है
0: जी,
1: जो राग शिवरंजनी में आधारित है
0: जी।
1: तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

0: सीने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नया आदमी इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत विश्वनाथ एम मूर्ति का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में नया आदमी फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे विश्वनाथ एम मूर्ति। इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज है सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का जन्म दिवस, तो आज के हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में कुछ युगल गीत राजेंद्र कृष्ण जी के कलम से। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे इस फिल्म के गाने के साथ। राजेंद्र कृष्ण है गीतकार और संगीतकार है मदन मोहन।
1: जब जब

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: प्यार की चुवन अपनेपन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में संजोग फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

लीजिए, अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में दुनिया ना माने इस फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण है गीतकार और संगीतकार है मदन मोहन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं

0: इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं उषा खन्ना। फिल्म का नाम आओ प्यार करें।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसरी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत

0: वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का देश मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
0: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है. इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं. इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर

0: चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
7: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
2: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट

0: मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्पलेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला स्टेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आप तो ऐसे न थे फिल्म से ये गीत सुनेंगे आप। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, निदा फाजली के स्वर और उषा खन्ना।

फिल्म संगीत की इस कड़ी में पेश है ये अगला गीत सुहाग फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, स्वर आनंद बख्शी के और लक्ष्मीकांत चारीलाल का संगीत।

0: अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, हर दिन एक नई सुबह नई ऊर्जा लेकर आता है और ऐसी ही ऊर्जा आप सभी में भरने के लिए हम हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेकर।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल, इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और साथ ही रखेंगे आप

0: आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं सीएल सोनी और फारूक अहमद शेख।
0: कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं प्रवीण कुमार।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी एचपीटी पर उद्घोषिका निशिका बोराणा और एफएम पर नीतू।
0: और दोस्तों इसी के साथ आपके होस्ट, दो होस्ट, मैं मनीषा बोहरा और मेरे साथ
1: मीता मुल्तानी। और नमस्कार, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजेश लामरोड। और साथियों, कार्यक्रम में बातें होंगी बहुत, लेकिन उससे पहले हम सुनाते हैं आपको गाने नए नवेले। तो सबसे पहले ये म्यूजिकल ट्रैक आपके लिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

दोस्तों, व्यक्ति के विकास में, जीवन के निर्माण में, मुसीबतों का सामना करने में, अपने संबंध और खुशहाली को बरकरार रखने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वह है सकारात्मक सोच। बिल्कुल, प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठ जाती हैं। तो हम भी अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक सोच से ओतप्रोत रखें और अभी आपको हम खुशहाल बनाते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक से।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों, हमारी दादी नानियाँ हमें शुरू से ही, बचपन से ही, कुछ ना कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हमें प्रेरणा देने की कोशिश करती रही हैं कि हमारे जीवन को हम और बेहतर ढंग से जी पाएँ, जो कि हमारे जीवन के, हमें जीवन जीने के तरीके सिखाता है, हमारे लिए कुछ, हमारे बुद्धि के द्वार भी खोलता है कि हाँ, हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेरक प्रसंग हम आपके लिए लेके आए हैं और हम आपको सुनवाते हैं दो बीजों की एक कहानी, जो हो सकता है आपके लिए भी जीवन में प्रेरणादायक हो। दोस्तों, एक उपजाऊ खेत में दो बीज साथ साथ गिरते हैं। जमीन में जब बीज पड़ते हैं तो पहला बीज बोलता है कि मैं बड़ा पेड़ बनना चाहता हूँ और मैं अपनी जड़ें धरती में फैलाऊंगा और सूरज की रोशनी लूंगा और फल फूल दूंगा। और ये कहकर वो मिट्टी के अंदर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो अंकुर बड़ा बन जाता है और फिर एक एक मजबूत पौधा बनकर बाहर निकलता है। दूसरा जो बीज धरती में गिरता है, वो सोचने लगता है कि अगर मैं मिट्टी में कीड़े हुए तो, अगर तेज बारिश आ गई तो, और अगर मैं नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा। और इस डर के कारण वो वहीं पड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया आती है और उस बीज को खा जाती है। समय बीतता है। पहला बीज, जो कि एक विशाल पेड़ बन गया था, वो लोगों को छाया, फल और शुद्ध हवा देने लगता है।
1: तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग डर के कारण अवसरों का उपयोग नहीं करते, वे अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो साहस के साथ अपना पहला कदम उठाते हैं। तो आप भी मित्रों, आज छोटा कदम उठाइए, क्योंकि बड़े सपने भी छोटे प्रयासों से ही पूरे होते हैं। और अब सुनते हैं हम ये प्यारा सा गीत।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टालें। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: दोस्तों, जीवन में लोग इंतजार करते हैं अवसरों का कि वो अवसर आएगा तब हम अपनी प्रतिभा दिखाएंगे या हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, लेकिन जीवन में अवसर कभी आते नहीं हैं। हमें उन्हें बनाना पड़ता है, हमें निकालने पड़ते हैं, अवसर हमने चुनने पड़ते हैं सही समय पर। लोग ज़्यादातर सोचते हैं, देर करते हैं कि कल ऐसा वादा करते हैं कि हम कल ऐसा कर लेंगे।

लेकिन कल ही वो दिन है जब लक्ष्य खत्म हो जाता है। इसीलिए आज से ही शुरू करें, भले ही छोटा हो, भले ही गड़बड़ हो, बस शुरू करें, क्योंकि समय के साथ वो छोटे सुधार असली नतीजों में बदल जाते हैं।

0: जी दोस्तों, बारिश और थोड़ी सी और आंधी तूफान आने से हम सोचते हैं कि हम डर जाते हैं कि तूफान आ गया, आंधी आ गई। लेकिन इसका अगर सकारात्मक पहलू देखें तो इससे हमारे टेम्परेचर में थोड़ी सी हमें राहत मिली है। तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का अगर कोई को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी मिलते हैं। और अगर हम इन्हीं को विचारों की में देखें तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और जिस तरह कहते हैं ना कि प्रकृति भी कितनी विचित्र है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, ये जो अलग-अलग मौसम है ना, इसके भी अपने अलग-अलग कुछ न कुछ पहलू हैं। और मित्रों, जब बारिश और धूप दोनों मिल जाते हैं ना, तो बड़ा ही सुंदर इंद्रधनुष बनता है। और इसलिए खूबसूरत जितनी जिंदगी जो हमारी है, जैसे इंद्रधनुष बहुत ही देखने में सुंदर लगता है, उसी तरह जो खूबसूरत जिंदगी है, उसके लिए भी बारिश और धूप की तरह सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। तो जिंदगी में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ हम अपने इस जिंदगी के पहिए को चलाते रहेंगे तो नए खट्टे मीठे अनुभवों के साथ जिंदगी आगे बढ़ती ही जाएगी।

0: तो दोस्तों 9 बजने वाले हैं, अब हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की। और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में

0: तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
2: हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है, उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ यहाँ के बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहाँ और क्या हो सकता है उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। गांव की यहाँ पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो मेरे गाँव के नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा। हम सरकार रोजगार देना चाह रही है, हम प्राइवेट स्तर पर भी देना चाह रहे हैं और वो निजी अपना कोई कारोबार प्रारंभ करें, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज मैं इस खारी का लांबा गांव में हूं, ये बहुत अच्छा गांव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का और डबल इंजन की सरकार का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खारी का लांबा ग्राम पंचायत में नया कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने और कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित करने की घोषणा की। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया। जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
3: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टॉल लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर

0: तथा कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है, जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका वो फंक्शनल रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है, जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई भी।
0: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग की सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2, कोटा में 6.6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। कहा, राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की। और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आज इस कार्यक्रम में हम आपके दो साथी मीता मुल्तानी
3: और मैं मनीषा बोहरा। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और सुनवाते हैं आपको गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख।

0: भेजिए, बाकी बाद में।
1: तोला क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अब हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं जिसमें डॉक्टर अंजू नागर, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर से बातचीत की है संजय व्यास ने, और विषय है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है और इसमें संयोजन किया है राजेश लामरोड़ ने।
1: मित्रों, हम सबका ध्येय स्वस्थ रहना और आयुष्मान बनना है और हमारे इसी ध्येय को पूरा करने की कोशिश करती है सरकारें, हमारी सरकारें। हम खुद ही सरकार हैं और सरकार हमसे ही है, तो सरकार हमें स्वस्थ और आयुष्मान बनाने के लिए योजनाएं बनाती हैं, कार्यक्रम लागू करती हैं। और इसी कड़ी में 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। ये पूरा का पूरा गांव जो है वो आयुष्मान बनाने के लिए, यानी आयुष्मान बनेगा और आदर्श बनेगा। तो इस योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं और आयुर्वेद विभाग इसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अंजू नागर, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
1: ये सबसे पहले योजना के बारे में हम दोस्तों को बताना चाहेंगे, श्रोताओं को, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसके मुख्य बिंदु।
2: इसके मुख्य बिंदु जो मेन, पहले इसका उद्देश्य मैं बता देती हूँ। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, जिससे वो आयुष्मान बन सके। ये राजस्थान सरकार की ये पॉलिसी है जिसपे जितने भी आयुर्वेद में आर्म सेंटर है, जैसे जोधपुर में 67 आर्म सेंटर है, तो ये फर्स्ट फेज अभी लागू किया गवर्नमेंट ने। उसमें 67 में से 5 आयुष्मान आरोग्य सेंटर है हमारे, जिसको आर्म सेंटर कहते हैं शॉर्ट में, उनको लिया गया है। उस पर जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है उसमें 18 पॉइंट है हमारे, जिसमें कि 100% प्रकृति परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद तम्बाकू मुक्त होना चाहिए, उच्च रक्तचाप की जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मधुमेह की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, किशोरियों में रक्त की कमी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, 100% जो है संस्थागत प्रसव होने चाहिए। इस तरह से 18 पॉइंट जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इन 18 पॉइंटों पे काम करके उस गांव को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, जिससे कि अपन एक आदर्श ग्राम की योजना लागू कर सकें, ऐसा गवर्नमेंट का ध्येय है। और इस पे आयुर्वेद डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें कि अभी आरोग्य सखी, आरोग्य मित्र आदि का निर्माण भी किया है, प्रत्येक वार्ड से 5-5 का। उन बच्चियों को या जो मित्र हैं या सखी हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो बीपी और डायबिटीज आदि का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उनको सिखाते हैं, सिखाने के बाद फिर उनसे काम लेते हैं। इस तरह से हम लोग मिलकर सब काम कर रहे हैं
1: जी। यानी जो हम लोग पाते हैं कि आमतौर पर हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, संस्थागत प्रसव एक समस्या है, महिलाओं में खून की कमी या आयरन की कमी एक समस्या है, या फिर जो मिडिल एज में लोग हैं उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये जो समस्याएं हैं इनको लेकर के और आरोग्य आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है, और उस ग्राम में

0: एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने बताया कि पूर्णतः ये तम्बाकू मुक्त होगा
1: जी।
0: तो कुछ इसमें बिंदु ऐसे हैं जो चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं, जैसे कि तम्बाकू मुक्त करना, ये क्या वाकई बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि गाँवों में हमने देखा है कि अलग अलग रूपों में तम्बाकू का सेवन किया जाता है और तम्बाकू छुड़वाने के लिए कोशिशें जो होती हैं उनके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते हैं, वापस उस आदत को पकड़ लिया जाता है जब तक कि इसका फॉलोअप नहीं होता है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा और आयुर्वेद इसमें क्या मदद कर सकता है तम्बाकू छुड़वाने में?
1: इसके लिए हम लोग मोटिवेशनल रैलियां निकालते हैं, हम लोग नाइट चौपाल में जो है लोगों को समझाते हैं कि आपको तम्बाकू नहीं लेना है, और जो बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं वह हमारे डॉक्टर्स उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साइड इफेक्ट बताते हैं कि भाई इसको आप खाओगे तो इससे आपको ये हो सकता है, कुछ फोटोज़ उनको दिखाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तम्बाकू खा रहे तो ओरल कैंसर के फोटोज़ दिखाएंगे, तो उनको एक तरह से डराते भी हैं समझाते भी हैं, और इस तरह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं आरोग्य मित्र हैं सखी हैं वो सब काम करते हैं, और वो स्क्रीनिंग कर करके लाते हैं घर से कि इस घर में बहुत ज़्यादा तम्बाकू खा रहे हैं या फिर पान पर आ गया कुछ भी जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें फिर हम लोग रैली निकाल के उनको सबको समझाते हैं, हॉस्पिटल्स में बुलाते हैं, उनकी पूरी एक सभा कराते हैं उसके बाद समझाने के बाद, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग वाकई में कह रहे हैं कि हम तम्बाकू नहीं खाएंगे।
0: सभी लोग इससे खास तौर पर प्रभावित होते हैं, और तम्बाकू के अलावा जो दूसरे व्यसन है उसमें तो परिवार के लोग खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जैसे के मामले में हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं, और जब भी शराब छुड़वाने की बात आती है तो महिलाएं इसमें सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। इसी तरह से तम्बाकू के मामले में भी परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो अगर अपनी एक भूमिका निभाएं तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, वो किस प्रकार इस आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जुड़ी हुई है?
1: इसमें क्या होता है कि एक जैसे जोधपुर में 5 गांव लिए हैं, जिसमें मोगरा कला है, हिंगोला है, कैरू है, जोलिया लिए, हरियाणा ढाका है, ये 5, ये जो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना में जो 5 आम सेंटर्स को लिया है, इस आम सेंटर में पूरा वही थीम है कि किस तरह से अपने को जाना, 100% टीकाकरण होना चाहिए, मतलब मूल इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनको बताया जाए, और वो चीज़ें जो है बाहर से नहीं लानी अपने को कहीं से भी, गांव में जो आपके पास साधन उपलब्ध है, अगर आपके गांव में आंवला होता है तो विटामिन सी के लिए आप कीवी मत खाइए, आपको वो कीवी उतना फ़ायदा नहीं करेगी जितना वो आंवला फ़ायदा करेगा, इसलिए उनको ये समझाया जाता है, और वन विभाग का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है कि यहाँ के एटमोसफेयर में जो पौधे उगेंगे या जिस तरह से कैसे कैसे पौधे हैं जिनको अपन उगाया जाए और उनको समझाया जाए कि आपको इसको इस तरह से यूज़ में लेना है या आपको इसको ऐसे खाना है, वो सब बता के अपन वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों से भी व्यक्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं अपन।
0: ये योजना अपने स्कोप में काफ़ी बड़ी है और आयुर्वेद विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ही रहा है, लेकिन चूंकि ये योजना है इसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं, तो क्या अन्य विभाग भी इसमें जोड़े गए हैं और उनकी भी उतनी ही सक्रिय भूमिका इसमें रखी गई है?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, अन्य विभाग भी इसमें लिए गए हैं, जैसे चिकित्सा विभाग को भी लिया गया है, कोई संस्थागत पैसा जो है 95% तक संस्थागत होने चाहिए, तो उसमें हमने चिकित्सा डिपार्टमेंट से भी लिया है, जैसे पौधे हैं उनके लिए वन विभाग से भी लिया गया, पंचायती राज विभाग को भी हमने इसमें शामिल किया है, ऐसे इस तरह से 9 डिपार्टमेंट है जिनको इसमें शामिल किया है, उन्हीं के सबके सहयोग से इसको अपन सक्षम बना सकते हैं
0: जी। 5 गांवों का चयन इसमें आपने कहा कि जोधपुर से किया गया है, अगर कोई और गांव इसमें वॉलंटियर करके आना चाहे कि हम भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या वो आ सकते हैं?
1: अभी तो नहीं आ सकते क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फर्स्ट फेज में सिर्फ 5 गांवों का, और वो हमने डिसाइड किया कि 5 कौन से लेने, जहां पर पूरा स्टाफ है और जहां पर हमें लगता है कि यहां अच्छा सा काम कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल हमने उन्हीं को लिया है। सेकंड फेज जब स्टार्ट होगा उसमें वापस 12 नाम और हमसे मांगे तो वो भी हमने दिए हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे सारे आम सेंटर पे स्कीम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब इनिशियली बेस पे इसको 5 पे स्टार्ट किया हम लोगों ने।
0: इस योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहा है? जैसे ग्रामवासी हैं, उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करनी है, उनके पैरामीटर्स ठीक हैं या नहीं है, इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए, इसकी जांच के लिए क्या आप स्वयं व्यक्तियों के पास जाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप जांचें करवाइए?
1: हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो आरोग्य मित्र आरोग्य सखी हैं, वो गांव में जाते हैं, पूरा देखते हैं। ANM है जहां आम सेंटर पर ANM भी काम करती है, वो पूरे गांव में एक एक परिवार से मिलते हैं, फिर वहां से वो स्क्रीनिंग करके लाती हैं कि इस परिवार में इतने डायबिटीज के पेशेंट हैं, इतने इसमें BP के पेशेंट हैं, वो सब करके लाती हैं, उन लोगों को फिर

0: हॉस्पिटल में मिलाया जाता है। अगर माइल्ड स्टेज है तो उनका ट्रीटमेंट वही आर्म सेंटर पे किया जाता है, और लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो उसको रेफर भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो स्टाफ है काम कर रहा है।
1: मैम, जो स्वास्थ्य है ये इस पे सबका हक है, और ये ऐसी पूंजी है जिसे हम बहुत ज्यादा खर्च या इन्वेस्ट किए बिना प्राप्त कर सकते हैं। तो आयुर्वेद हमारा इसी तरह का विज्ञान है जो आपको आरोग्य प्रदान करता है। जो इस योजना में शामिल हैं या नहीं हैं, उन सब के लिए एक स्वस्थ और आरोग्य पूर्वक जीवन के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं सलाह देना चाहूंगी कि सबसे पहले जो अपनी दिनचर्या है वो एकदम ठीक रखें, जो भी आयुर्वेद में बताया। जैसे आयुर्वेद में सबसे पहले डिजीज की कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिखाया कि ये व्याधि हो गई है तो इसका इलाज करो। सबसे पहले आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य का अपन कैसे रक्षा कर सकते हैं वो सबसे पहले बताएं। जो भी दिनचर्या अपनी उसको पहले बिल्कुल मेंटेन रखें तो आदमी बीमार होगा ही नहीं और उसको किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं है, मैं कहना चाहूंगा।
1: मोटे तौर पर आयुर्वेद में दिनचर्या और जो आहार का है उसके बारे में क्या कहा गया है, किस तरह का आहार आपका होना चाहिए, क्या ऋतु के अनुसार आहार परिवर्तित होना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, ऋतु के अनुसार ही होना चाहिए आहार। 6 ऋतुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, उनके अकॉर्डिंगली अगर आप करोगे, खान पान अपना रखोगे, आहार विहार रखोगे, तो आप कभी बीमार नहीं रहेंगे।
1: जो हमारे परंपरा में आहार लिए जाते हैं ऋतु के अनुसार बदलते भी हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर्दियों में दही का सेवन उतना न करें, गर्मियां आने पर आप दही का सेवन कर सकते हैं, तो वो मोटा मोटी तौर पर क्या आयुर्वेद के अनुसार ही है जो हमारी परंपराओं में आहार चलते हैं?
0: ये है कि गर्मियां है तो दही खाइए, सर्दियां है तो दही नहीं खाना है, ऐसा लोग आम लोग कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, गर्मियों में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है।
1: अच्छा,
0: आपको छाछ पीनी चाहिए जिसको आयुर्वेद में तक्र बोला है, और उसका बनाने का तरीका भी अलग बताया। सर्दियों में जो लोग दही बंद कर देते हैं, जबकि सर्दियों में दही खाना चाहिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है।
1: तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेद के अनुसार कौन से खाद्य पदार्थ जो हैं वो अनुमत है और कौन से नहीं है, ये थोड़ा सा आपको पता कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इस योजना के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगे?
0: इस योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अगर ये 5 ग्राम जो हमारे चिन्हित है अगर उस पर सक्सेस होती है तो आगे पूरे राजस्थान में हम लोग इसको करने वाले हैं। इसके साथ ये है कि इस योजना को लागू करने से कहीं ना कहीं अपन एलोपैथी के लोड को कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां, बाइलर डिजीज है आपको, या आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गए, तो आप अपनी रसोई से भी इसका इलाज कर सकते हैं। रसोई से लेके आपको कहाँ जाना है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, फिर अगर वहां से आप ठीक नहीं होते तो आप जाइए एलोपैथी डिस्पेंसरी। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अपन इस एलोपैथी के लोड को अगर ये योजना चालू होती है तो अपन कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जो 5 गांव चयनित हुए हैं उनको आयुष्मान आदर्श ग्राम बनाने की जो योजना है, इसकी टाइमलाइन है वो क्या है?
0: टाइमलाइन तो सर 1 साल का ही है इसमें, वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उस गाँव को 100% हम लोग स्वस्थ कर दें। 100% नहीं तो कम से कम जो 18 इंडिकेटर्स हैं अपन उसको अपन फॉलो करके अपन उसमें खरे उतर सकते हैं।
1: जो गांव इसके लिए विशेष प्रयास करते हैं और बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, गांव और गांव वाले जो हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव या कोई प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन पुरस्कार जैसा कुछ है?
0: जो गांव इन 18 पॉइंट को अपना पूरा फुलफिल करता है उनके लिए सरकार 11 लाख रुपए एज ए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
1: और वो 11 लाख रुपए आपको फिर से स्वास्थ्य में ही खर्च करने हैं या गांव अपने विकास के लिए भी खर्च कर सकता है?
0: अपने विकास के लिए भी सर कर सकते हैं, और जो भी ग्राम पंचायत को दी जाएगी वो अपने उत्थान के लिए उसको खर्च कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अंजू नागर मैम, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के बारे में आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी अभी आपने एक भेंटवार्ता सुनी, डॉक्टर अंजू नागर डेप्यूटी डायरेक्टर आयुर्वेद डिपार्टमेंट जोधपुर से भेंट करता थे संजय व्यास, और प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का, और इसका विषय था आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको गीत।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रा सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

श्रोताओं, आज है 6 जून और 6 जून के दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास। साल 1674 मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ था आज ही के दिन और उन्हें छत्रपति की उपाधि से इसी दिन नवाजा गया था। छह जून 1944 को डी डे के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने नाजी जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस को मुक्त कराने के लिए उत्तरी फ्रांस के नॉर्मेंडी समुद्र तट पर

0: आक्रमण किया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक और हवाई आक्रमण माना जाता है। साल था 1984 और दिन था आज का, यानी 6 जून को ही भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर को चरमपंथियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार आज ही के दिन समाप्त हुआ था। वर्ष 1997 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर बैंकॉक में बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था आज ही के दिन। और इसी के साथ ही आज है शनिवार, तो श्रोताओं हम आपको लिए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हम सुनवाते हैं स्पेशल रेसिपी आपको।
1: जी दोस्तों, आज की शनिवार स्पेशल रेसिपी में है मैंगो बाइट्स। क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना ऐसी ही रेसिपी बताई जाए जो सीज़न के अनुकूल हो। तो आम अभी सभी घरों में आराम से उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों, हम इस सामग्री आपको पहले सबसे पहले नोट करवा देते हैं कि मैंगो बाइट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी सामग्री के तौर पर। सबसे पहले पके आम का पल्प 1 कप, नारियल का बुरादा 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप। आप बाज़ार से ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, हम आपको इसका भी तरीका बताएंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर और बारीक कटे पिस्ता और बादाम गार्निशिंग के लिए। अब दोस्तों, इसकी विधि की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई लेंगे, अगर नॉन स्टिक हो तो बेहतर है। उसमें 1 छोटा चम्मच घी डालकर आप उसमें नारियल का बुरादा डालकर उसे भुनेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनना है उसे, उसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ खुशबू आनी चाहिए और वो हल्का सा उसमें घी का एक ऐड हो जाना चाहिए टेस्ट। फिर उसके बाद में हम आम का पल्प डालकर उसे हिलाएंगे 2 मिनट तक 3 मिनट तक इसे भी पकाएंगे। उसके बाद में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि वो जो मिश्रण है वो गाढ़ा होकर कढ़ाई से किनारे छोड़ न दे। उसके बाद में गैस बंद कर देंगे और मिश्रण को प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हथेलियों पर घी लगाएंगे। हथेलियों पर घी लगाने से हमें इसके बाइट्स बनाने में, लड्डू बनाने में आसानी रहती है। तो हम हथेलियों पर घी लगाकर लड्डू बनाएंगे और फिर अंत में सूखे नारियल के बुरादे में उसे थोड़ा रोल कर देंगे ताकि उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ जाए सूखे नारियल की, और फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट गार्निश करेंगे। तो ये बन के तैयार है आपके मैंगो बाइट्स। दोस्तों, जो होती है इलायची इसमें पड़ती है, मैंगो है और नारियल का बुरादा है, ये मौसम के अनुकूल है। नारियल हमें हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है और आम तो है ये हमारे सेहत के लिए, तो ये एक अच्छी सेहतफुल रेसिपी है। ज़्यादा शक्कर का हमने इसमें कोई ऐसा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जो आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ लेंगे वो थोड़ा सा मीठा होगा और मैंगो तो होता ही है मीठा। कंडेंस्ड मिल्क बनाने का भी हम आपको घर पर तरीका बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाज़ार में महंगा मिलता है तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। अगर आपने 1 किलो दूध लिया है तो आपको 1 किलो दूध को गैस पर चढ़ा कर उसमें उसको 1/4 होने तक आपको उसको पकाना है, दूध को गाढ़ा होना है। तो उसके हिसाब से आप उसमें शक्कर डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आप उसमें 1 पिंच या 2 पिंच आप उसमें मीठा सोडा डाल दीजिए। जब आप उसमें डालेंगे तो उसका वो धीरे धीरे धीरे धीरे जल्दी से वो 1/4 पर आ जाएगा, दूध गाढ़ा होकर कम टाइम लगेगा और उसके साथ ही उसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाएगा और उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बढ़ जाएगी। उसे आप स्टोर ठंडा करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा मीठा सोडा डालने से। तो ये कंडेंस्ड मिल्क की भी रेसिपी हमने आपको बताई, अब आप घर पे आराम से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए।
0: तो इस मैंगो बाइट के खट्टे मीठे स्वाद के साथ ही हम सुनते हैं फिल्म खट्टा मीठा का ये सॉन्ग।

0: श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं एक खास बात। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन कप में धावक गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने अनिमेश कुजूर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा और 10.10 सेकंड का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।
1: और दोस्तों, इसी के साथ खास बात में एक और बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर निरंतर प्रयासरत है, अग्रसर है, और इसीलिए हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। और इसी दिशा में हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी ने एक और प्रयास किया है और हाल ही में एक भारत की स्वदेश

कृषि रक्षा तकनीक को मजबूती देने की दिशा में जोधपुर में आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, ये मानव रहित यान है यानी UAV, इसका परीक्षण जो किया गया था जोधपुर में ही किया गया था, हमारे ये खास बात है। और दोस्तों, इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और ये लगातार 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और मिशन के अनुसार विभिन्न प्रकार के वारहेड लगाए जा सकते हैं जो इसे और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, ये जो UAV है वो निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले जैसे अभियानों के लिए विकसित किया गया है। परीक्षण के दौरान इसकी त्वरित तैनाती, युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता और फील्ड परिस्थितियों में संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया गया अभी हाल के दिनों में, और इसकी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिनेंस मिशनों में उपयोगिता भी परखी गई है। और इसका परीक्षण 53 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार की हवाओं के बीच किया गया, जिसमें ये UAV सफल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये आत्मघाती ड्रोन है, इसमें और जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? जो आम ड्रोन होते हैं वो मुख्यतः जासूसी और निगरानी के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहीं जो आत्मघाती ड्रोन होता है वो लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया जाता है। जब दुश्मन के राडार सहित अन्य चीज़ें नज़र आती हैं तो इसे लॉन्च किया जाता है और ये हवा में लंबे समय तक मंडरा सकता है और इशारा मिलते ही लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। और वहीं जो आम ड्रोन होते हैं वो मिसाइल में हवा में इतना इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, उनकी हवा में रहने की क्षमता थोड़ी सीमित होती है।

इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताते हैं कि और भी हमारे स्वदेशी जो मानव रहित विमान है यूएवी, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से उपलब्ध हैं। लक्ष्य और एक अभ्यास करके डीआरडीओ ने विकसित किया था, जो कि ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए काम में लिया जाता है। एक निशांत और उत्तम है जो भी डीआरडीओ ने बनाया है, जो कि जासूसी और निगरानी के लिए यूज में हम लेते हैं। एक तपस है नाम से, जो डीआरडीओ ने बनाया है, वो ट्रैकिंग, जासूसी और लक्ष्य को नष्ट कर देता है, ऐसे उसके उपयोग रहते हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक घातक है, आत्मघाती ड्रोन है वो भी, और वो जो है वो भी डीआरडीओ ने बनाया है, और वो शत्रु सीमा में हमला करने, जासूसी करने और एक नेक्स्ट जन इलेक्ट्रॉनिक वार वेपन के रूप में यूज में लिया जाता है। ये स्टेल्थ है, हाइपरसोनिक कॉम्बैट ड्रोन है, और दोस्तों इसमें जो इंजन यूज में लिया गया है वो कावेरी इंजन यूज में लिया गया है। तो दोस्तों खास बात हमारे लिए ये बन जाती है, क्योंकि ये जो ड्रोन हमने आपको दिव्यास रैम के बारे में बताया, ये हमारे इसका परीक्षण जोधपुर में किया गया है, और हम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं, और हम ऐसे ही आशा करते हैं कि हम इसी तरह प्रयासरत हैं और हमारी रक्षा को हम सुनिश्चित कर सकें।

दोस्तों, अब हम आपको करते हैं, आपको बताते हैं काम की बात जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वो है पर्याप्त और गहरी नींद। हाँ मित्रों, आपके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद अमृत के समान है। यह आपके दिमाग को तरोताजा करती है, याददाश्त मजबूत करने में मदद करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बीमारियों और पुरानी समस्याओं के खतरों को कम करती है। हाँ दोस्तों, गहरी नींद, सही नींद। रात के जैसे 11 बज रहे हैं, आप बिस्तर पर हैं, पर दिमाग में चल रही है क्रिकेट कमेंट्री। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो आज की काम की बात है, नींद को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। दोस्तों, नींद कोई लग्जरी नहीं, बॉडी का फ्री वाला रिपेयर सेंटर है, पर हमारा फोन, टेंशन, चाय, ये सब इसके शटर डाउन कर देते हैं। तो हम अब आपको बताते हैं नींद के 3 बटन जो आप आज से रात को दबा सकते हो। पहला बटन है नींद के चक्र। नींद 90-90 मिनट के चक्कर में चलती है। सुबह 6 बजे उठना है तो 11 बजे सो जाओ, या 12:30 बजे, बीच में 12 बजे सोए तो 90 मिनट का चक्कर टूटेगा। तो ये आप ध्यान रखें कि ये 90-90 मिनट्स का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल नींद को बराबर करता है। और सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का नहीं। अपने आप आपका समय स्वतः ही बराबर होता जाएगा और आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरी बात है, सोने से 30 मिनट पहले अपने फोन को दूसरे कमरे में सुला दो। स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग से कहती है, अरे भाई अभी दिन है भाई, और हम करवटें बदलते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं। फोन नहीं, बिल्कुल हाँ, फोन को आप अपने रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करो, और जहां सो रहे हो वहां आपको नींद लेने के लिए अगर कुछ टाइम पास करना है तो या तो कोई किताब पढ़ो या कोई पुराना अच्छा सा गाना ट्राई करो। सोने तीसरी बात है, सोने से पहले 2 मिनट गुनगुने पानी में पैर डालो। यदि उसमें नमक डाल सको तो नींद और अच्छी आएगी। दिन भर की थकान, टेंशन सब पानी में घुल जाती है। ये दादी माँ का नुस्खा भी है और साइंस भी कहती है कि बॉडी का तापमान 1 डिग्री गिरते ही गहरी और अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों, अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आपको यदि नींद अच्छी नहीं आती है तो इन नुस्खों का जरूर प्रयोग करें।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: दोस्तों आज हम लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जी की जो कि असम के महान स्वतंत्रता सेनानी समाज सेवी और स्वतंत्र भारत में असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनकी जयंती मना रहे हैं। दोस्तों उनका जन्म असम के राहा में 6 जून 1890 को हुआ था और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हुए आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
1: साथ ही आज हम जयंती मना रहे हैं भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की। अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय भी थे। उन्होंने अरविंद घोष के वंदे मातरम पत्र में काम किया। इसके बाद वे युगांतर पत्र के संपादक हुए और इस पत्र के द्वारा उन्होंने ज्वलंत क्रांतिकारी भावों का प्रचार करना प्रारंभ किया।
0: दोस्तों आज है मासी वेंकटेश अयंगार कन्नड़ साहित्य के महान लेखक, कवि, नाटककार और चिंतक उनकी जयंती। उन्होंने उनका जन्म 6 जून 1891 को वर्तमान कर्नाटक में हुआ था और वे कन्नड़ भाषा के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों में गिने जाते हैं। दोस्तों उनकी प्रसिद्ध कृतियों में चिक्कवीर, राजेंद्र, सुबन्ना, शिशम्मा और काकन कोटे शामिल है।
1: श्रोताओं, जयंती के इसी अवसर पर आज हम जयंती मना रहे हैं प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची की, जिनका वास्तविक नाम रियासत हुसैन रिजवी था। नेताओं व गलत कार्यों में लिप्त व्यक्तियों पर कटाक्ष करने के लिए एक शेर बहुत ही इस्तेमाल होता है, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता होगा कि इस शेर को लिखने वाले शायर का नाम शौक बहराइची है। तो जी हाँ दोस्तों, वह शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।
0: दोस्तों इसी के साथ गुरबचन सिंह रंधावा, जो कि भारत के महान एथलीटों में से एक हैं, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। डेकाथलॉन और 110 मीटर हर्डल्स के लिए वे प्रसिद्ध रहे। दोस्तों उन भारत में सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी खिलाड़ियों में उन्हें गिना जाता है। उन्हें 1964 के ओलंपिक उद्घाटन समारोह में वे ध्वजवाहक भी रहे थे भारतीय दल के। 1962 में वे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 1960 और 64 के ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है।

0: दोस्तों, आज सुनील साहब की जयंती भी है। भारत के महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और समाजसेवी सुनील साहब को कौन नहीं जानता। दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध फिल्में मुझे जीने दो, पड़ोसन, रेशमा और शेरा थी, और उन्होंने भारतीय फिल्म सिनेमा जगत में काफ़ी योगदान दिया, और उसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, और आज हमने उनके कई गीत आपको सुनवाए भी हैं।
1: साथ ही

आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी की। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बासु भट्टाचार्य का सहायक बनकर की और साथ ही अपनी फिल्मों में कई ऐसी सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी बातचीत की। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को बासु चटर्जी ने कई ऐसी फिल्में दी जिन्होंने इंडस्ट्री के कई आयामों को बदल दिया। उनकी मुख्य फिल्में थी पिया का घर, चितचोर, स्वामी, खट्टा मीठा, प्रियतमा, चक्रव्यूह, बातों बातों में और सफेद झूठ आदि। बासु चटर्जी ने भारतीय टीवी को भी पहला बिना टोपी वाला जासूस दिया। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये सीरियल था वर्ष 1993 में आया ब्योमकेश बख्शी। तो अब हम सुनील दत्त पर फिल्माया ये गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक में इतना ही। अब मुझे यानी कि मनीषा जोशी बोहरा को और मेरे साथ
1: मीता मुल्तानी को इजाजत दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, एक फनकार।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: दोस्तों, स्वागत है आपका 102.1 FM सन सिटी के प्रोग्राम एक फनकार में, और हम आपके आज के होस्ट हैं। मैं हूं मनीषा जोशी बोरा, और मेरे साथ हैं
8: मीता मुल्तानी, और हमारे साथ अनाउंसर ऑन ड्यूटी नीतू।

जी दोस्तों, आज के एक फनकार प्रोग्राम में अब इस गाने से आपको गैस करना है पहले कि हम आज एक फनकार प्रोग्राम में किसे शख्सियत को लेना लेंगे। तो ये गाना सुनिए और आप सोचिए, तब तक फिर हम आपको बताएंगे।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत सुना, बड़ा ही मशहूर और सदाबहार गीत। इसके गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लेकिन हम आज एक फनकार में बात कर रहे हैं उन कलाकार की, उस कलाकार की जिन्होंने इसमें अपना गायन किया था, और वो गायक दो थे, मोहम्मद

0: रफी और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर। जी हाँ श्रोताओं, कई लोग इस गाने में आवाज समझते थे लता मंगेशकर की, लेकिन इसमें गायिका थी सुमन कल्याणपुर। अपनी बहुत ही प्यारी आवाज से इस गाने को अपनी आवाज में पिरोया था सुमन कल्याणपुर ने, जिनका हाल ही में अभी 31 मई को निधन हो गया था। तो आज की हमारी फनकार है मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर।
1: जी दोस्तों, सुमन कल्याणपुर ने वे 1960 और 70 के दशक के बीच की एक लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर थी और उन्होंने अपने उल्लेखनीय करियर में 3000 से ज़्यादा फिल्मी गाने गाए, गैर फिल्मी गीत भी गाए उन्होंने, और इनमें हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी जैसे गाने भी शामिल हैं, और लगभग 857 ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदी गाने गाए थे। तो दोस्तों, आज हमारा पूरा प्रोग्राम इन्हीं फनकार पर आधारित रहेगा और हम आपको सुनाएंगे इन्हीं के गाए हुए गीत और इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका में हुआ था। उनके पिता बैंक अधिकारी थे। 1943 में मुंबई आने पर पढ़ाई और संगीत का प्रशिक्षण उन्होंने मुंबई में ही लिया। अपने गुरु यशवंत देव से उन्होंने बाकायदा संगीत सीखा। उन्होंने ही मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में पहली बार गीत अपने गुरु के साथ गाया। यह फिल्म बहुत ही आगे बढ़ी और संगीतकार मोहम्मद शफी ने सुमन को फिल्म मंगू में उसके बाद गाने के अवसर दिए।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म पुनर्जन्म आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
2: दोस्तों सुमन कल्याणपुर जी की सांगीतिक यात्रा में उनके एक दोस्त का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके एक पारिवारिक दोस्त और पुणे के प्रभात फिल्म्स के संगीत निर्देशक पंडित केशव राव भोले ने सुमन की गायकी को पहचाना और उन्हें शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग दी। सुमन ने संगीतकार यशवंत देव से भी मराठी लिरिकल संगीत की ट्रेनिंग ली थी और आखिर में उन्होंने अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से भी लाइट क्लासिकल संगीत सीखा था और फिर उनके संगीत का सफर शुरू हुआ जो अभी हाल ही में थमा है।

एक रोचक बात यह है कि सुमन कल्याणपुर पहले गायिका नहीं बल्कि चित्रकार बनना चाहती थी। जी हाँ, बचपन से ही संगीत के साथ साथ सुमन जी की गहरी रुचि चित्रकला यानी पेंटिंग में थी। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन जब उनकी मखमली आवाज लोगों ने सुनी और श्रोताओं ने उनकी आवाज की मिठास और सादगी को उनका दीवाना बना दिया। हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में लगभग 3 दशकों तक संगीत प्रेमियों को उन्होंने मंत्रमुग्ध किया।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का 102.1 FM सन सिटी और कार्यक्रम है एक फनकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों,

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज काफी मायनों में लता जी से मिलती थी, तो उनकी तुलना भी उनसे की जाती थी। लेकिन इन तुलनाओं और फिल्मी जगत के तौर तरीकों के बावजूद सुमन जी ने प्रतिस्पर्धा में अब आगे बढ़ी और अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया और अपना रास्ता खुद तय किया। और आज भी जब हम उनके गीतों को सुनते हैं तो उनकी मधुर आवाज़ हमारे हृदय तक पहुंचती है और हम बस उसे गुनगुना उठते हैं, और वे जब तक गाए, मतलब उनकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती रहेंगी, तब तक हम उन्हें याद करते रहेंगे।

दोस्तों सांझ और सवेरा फिल्म का ये गीत जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाया था, ये एक क्लासिक है और ये उनके जीवन के सांगीतिक जीवन में एक माइलस्टोन की तरह साबित हुआ। बहुत गीत बहुत सराहा गया और बहुत ही उम्दा इन्होंने ये गीत गाया था और उन्होंने अपनी शास्त्रीय प्रतिभा को भी कि वे शास्त्रीय संगीत भी गा सकती हैं, इस प्रतिभा को अपना हुनर इस गीत के माध्यम से दिखाया और वाकई में ये हमारे दिलों में आज तक राज करता है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की जोड़ी बहुत जमी। दोनों ने मिलकर कई ड्यूट गीत गाए और इन गानों को संगीत प्रेमी आज भी काफी शौक से सुनते हैं, जिसमें फिल्म शगुन का पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो सुनते हैं वही गीत।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
5: दोस्तों, सुमन जी ने अपने सिनेमा के करियर में बात एक रात की, दिल एक मंदिर, दिल ही तो है, जहां आरा, सांझ और सवेरा, साथी जैसी फिल्मों में गीत गाए। और जब वे अपने करियर के शिखर पर थी, तब उन्होंने उसी समय की शीर्ष अभिनेत्रियों को आवाज़ दी, जैसे कि मीना कुमारी, नंदा, तनुजा, नूतन और साधना।

मित्रों, सुमन कल्याणपुर को अपने पति का बहुत ही अनोखा साथ मिला। 1958 में उनकी शादी मुंबई के प्रतिष्ठित व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से हुई थी। शादी के बाद रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी उनके पति ने उनका बहुत समर्थन किया। वे रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो के बाहर घंटों बैठते और सुमन जी का इंतजार करते ताकि वह बिना किसी बाहरी तनाव के अपने सुरों पर ध्यान दे सके। सुनते हैं उनकी आवाज में गाया हुआ ये गीत।

सुमन जी पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा कहता है ना कि किस्मत आपको कहीं और ले जाती है। हमें पता नहीं होता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है, लेकिन किस्मत का ये खेल अच्छा ही निकला और वे एक संगीत गायिका बन गई और संगीत की क्षेत्र में आई। और आज जब हम उनके गाने बैठकर सुन रहे हैं और आप लोगों को, सभी को, श्रोताओं को सुना रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, तो एक और बात, आप दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि सुमन जी को जो पहली उनकी परफॉर्मेंस हुई थी वो 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ही उन्हें उन्होंने दी थी, और इसी से उन्हें अपना पहला फिल्मी गाना हासिल करने में भी मदद मिली थी।

दोस्तों, करीब 28 साल के अपने कैरियर में सुमन कल्याणपुर ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना एक सम्मानजनक स्थान बनाया। वे अंतर्राष्ट्रीय टूर पर परफॉर्मेंस देने वाली भारतीय गायिकाओं की फेहरिस्त में भी शुमार थीं। वे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखने वाली पहली भारतीय प्लेबैक सिंगर भी थीं। उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ साथ वर्ष 1966 और 1970 में सुर श्रृंगार संसद अवार्ड भी जीता। उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1965 में उन्हें मियां तानसेन पुरस्कार और 1970 में भी यही पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार की उपाधि से भी नवाजा गया। इनकी इतने सारे जो पुरस्कार इन्हें मिले, वे उनकी अनूठी प्रतिभा को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से वे भारतीय संगीत जगत में फली फूली और अपनी चमक बिखेर पाई। तो आज इस प्रोग्राम के द्वारा हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल। जिस तरह से फूल बगिया को महकाते हैं, उसी तरह सुमन जी भी अपनी आवाज़ से संगीत जगत को महका गई और हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आज का प्रोग्राम को यहीं तक हम रखते हैं। दोस्तों, मुझे यानी कि मनीषा जोशी बारा को और मेरे साथ
1: मीता मुल्तानी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक का हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक का हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
4: एक फनकार कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

मोहब्बत अपनापन कार्यक्रम।

आकाशवाणी जोधपुर के इस खूबसूरत और दिलों को जोड़ने वाले कार्यक्रम अंदाज़े बयां में नीतू, मैं यानी नीतू आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे अगर इस वक्त आप अपने अहले खाना के साथ बैठे हैं, और उन सबको मेरी जानिब से ढेर सारी मोहब्बत। और अगर आप तन्हा हैं तो यकीन मानिए आज की ये महफिल सिर्फ आपकी अपनी है। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मिले भी दिलों में जगह बना लेते हैं। रेडियो भी में से एक है। जिंदगी में दौलत, काम और भागदौड़ तो हमेशा रहेगी, लेकिन इंसान को असली सुकून अपनापन और खुलूस से मिलता है। किसी की या बस किसी के साथ खामोशी से

बैठ जाना। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को और भी हसीन बना देती हैं। तो आइए आज की इस महफिल में कुछ दिल की बातें करते हैं, कुछ यादों की खुशबू बिखेरते हैं और सुनते हैं कुछ ऐसी गजलें जो रूह तक उतर जाए।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

आज का लोग साथ तो है लेकिन गुफ्तगू कम हो गई है। मोबाइल में पूरी दुनिया मिल गई है लेकिन दिलों के दरमियान फासले कहीं बढ़ गए हैं। इसलिए कभी कभी अपने लोगों के साथ बेवजह बातें करना, हंसना, पुरानी यादें ताज़ा करना, कुछ किस्से सुनाना,

क्या पुरसकून और दिलकश आवाज़ है। दोस्तों, कभी कभी कोई गज़ल हमें उन लोगों की याद दिला देती है जो आज हमारे साथ नहीं होते, लेकिन दिल में हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा आबाद रहते हैं। और सच कहूँ, अपनों की याद भी एक बेहद खूबसूरत एहसास होती है। श्रोताओं, आप जहाँ भी हैं, घर में, सफ़र में, दफ्तर में या अपने काम के बीच, ज़रा सा मुस्कुरा दीजिए। क्या पता आपकी मुस्कान किसी और की खुशी की वजह बन जाए।

श्रोताओं, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल अच्छा नहीं था तो आज बेहतर हो सकता है, और अगर आज थोड़ा मुश्किल है तो यकीन रखिए, आने वाला कल आसान ज़रूर होगा। बस खुद पर भरोसा रखिए और ज़िंदगी को शिकायत नहीं, शुक्रगुजारी के साथ जीना सीखिए। जो इंसान शुक्र अदा करना जानता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून खुद ब खुद उतर आता है।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
4: एक गजल में जैसे पूरी जिंदगी की मिठास और नरमी छुपी हुई हो। दोस्तों, हम जिंदगी में बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुकून छोटी छोटी बातों में होता है। माँ की आवाज़, बच्चों की खिलखिलाहट, पुरानी तस्वीरें, बारिश की मिट्टी की खुशबू और अपने लोगों का साथ, यही तो जिंदगी की असली दौलत है। और सच पूछिए, जिस इंसान के पास मोहब्बत करने वाले लोग हों वो कभी गरीब नहीं होता।

दोस्तों, हर इंसान के दिल में कुछ अनकही जज्बात होते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ उम्मीदें और कुछ अधूरी बातें। लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। कभी खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए, आराम कीजिए, पुराना संगीत सुनिए, खुलकर हंसिए और अपने दिल को थोड़ा सा सुकून दीजिए। क्योंकि खुश रहना भी एक हुनर है, और ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता।

अगर ज़िंदगी आपको थका रही है तो थोड़ा ठहर जाइए, लेकिन हार मत मानिए। धीरे चलना गलत नहीं है, बस सफ़र जारी रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अच्छे लोग और अच्छे रिश्ते बड़े नसीब वालों को मिलते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही रोशन सवेरा आता है।

श्रोताओं, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है मोहब्बत, अपनापन, सकारात्मक सोच और दिल को सुकून देने वाली गज़लों से सजा सुकून देने वाली गज़लों से सजी ये महफिल आपको पसंद आई होगी। अगर आज की बातें आपके दिल को छू पाई तो बस मुस्करा दीजिए। अपने लोगों का साथ निभाते रहिए और ज़िंदगी को मोहब्बत के साथ जीते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई गज़लों, नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं नीतू, आकाशवाणी जोधपुर से आपसे रुखसत लेती हूँ।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सुनते हैं हिंदी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21

0: दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानस उथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

श्रीराम चंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जी

0: My problem is education, nutrition, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद. गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का.

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
4: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है, तो ऐसा नहीं है। जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, बस यही जीवन दर्शन है। इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची, तो छोटी सी इबारत थी क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने

कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर। हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

एक आपने सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप

प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे, जलते रहना, बुझना मत, जलते रहना। कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना? हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है। मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है। और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना ये जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है। उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है। शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है। बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहां उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। शब्द रे। सोना रे।

किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के ठीक दो बजकर माफ कीजिएगा दिन के ठीक 1:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आधी आबादी का मनपसंद कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवाटी का सुनने वाली सभी सखियों को उनकी प्यारी सी सखी स्वप्नीला और
1: वंदना शर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार।

0: ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। सचमुच स्वप्निला, जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसमें कभी खुशियों के रंग बिखरते हैं तो कभी चुनौतियां हमें नई सीख देकर आगे बढ़ने का हौसला देती है।
1: बिल्कुल वंदना, और ज़िंदगी में खुशियाँ तब आती है जब हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मुस्कुराहट देखकर के दिल खुशी से भर उठता है।
0: वे गिरकर संभलना जानते हैं, रूठकर फिर मुस्कुराना जानते हैं, और हर दिन का जो स्वागत होता है वो पूरे उत्साह के साथ करते हैं। शायद इसी वजह से जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है।
1: बिल्कुल वंदना, बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं। उन्हें खिलने के लिए सही माहौल चाहिए होता है, धैर्य और स्नेह चाहिए होता है। उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा बचपन और होना चाहिए उनके आसपास एक ऐसा आत्मविश्वास जो उनकी जिंदगी की नींव को मजबूत करता है।
0: तो आइए मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सखियों कहा जाता है कि अगर जिंदगी की असली खूबसूरती देखनी हो तो बच्चों की मुस्कान में देखनी चाहिए। उनकी खिलखिलाहट में एक नई उम्मीद होती है। लेकिन जो उनकी खिलखिलाहट है वो बरकरार रहे, उसकी उसकी जो चुनौती है वो हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़ गई है।
1: सही बात है, वरना बच्चों की मुस्कुराहट तो तब कायम रहेगी जब हम बच्चों को समय देंगे। लेकिन आजकल हमारी जो सखियां हैं, जो नौकरी पर जाती हैं, काम
0: जी
1: करती हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं हो पाता कि वो अपने बच्चों को समय दे पाएं। और वरना होता क्या है कि जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी में होती है महिलाएं, उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो
0: जी
1: उनके लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की बात होती है वो यही होती है कि हम कितनी छुट्टी लें। तो अगर वो छुट्टी लेने का भी सोचती हैं, छुट्टियां खत्म हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि अब मैं किस पे विश्वास करके अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं।
0: पहले पहले के ज़माने में तो नानियाँ दादियाँ जो हुआ करती थी वो बड़े आराम से बच्चों को रख लिया करती थी, तो ये तकलीफ कम आती थी। अगर मैं जो है माँ है वो वर्किंग वुमेन भी है तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो ये दिक्कत बढ़ती जा रही है कि बच्चों को हम कैसे मैनेज करें।
1: बिल्कुल वंदना, ये होता है। और कोई भी महिला स्पेशली जो माँ होती है ना, वो एकदम से किसी पे विश्वास नहीं कर सकती अपने बच्चे को छोड़ने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उनके पास में एक डे केयर का ही ऑप्शन रहता है।
0: जी
1: लेकिन हमारी बहुत सारी सखियाँ हैं, उनके दिमाग में ये एक डर रहता है, कुछ ना कुछ भ्रांति भी रहती है कि अगर हम बच्चे को डे केयर में या क्रैच में रखेंगे तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं, सेफ रहेगा या नहीं, उसको कोई तकलीफ आएगी या नहीं। तो आज है ना इसी मैटर पे क्यों नहीं हम बातचीत करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने भ्रांतियों की बात की तो आज इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम फोन आउट के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रियंका जैन से, जो वात्सल्य चाइल्ड केयर की सह संस्थापक हैं और वर्ष 2010 से बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्ष 2016 से एम्स जोधपुर में भी क्रैच का सफल संचालन कर रही हैं और पिछले कई वर्षों से उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़े अभिभावकों के 500 से अधिक बच्चों की देखभाल करने में और उनका विकास करने में योगदान दिया है। और तो चलो सुनते हैं फोन आउट के माध्यम से प्रियंका जैन जी से की बातचीत, जिनसे बात कर रही हैं स्वप्नीला श्रीवास्तव और जिसका विषय है डे केयर और क्रैच में बच्चों की सुरक्षा।
1: नमस्ते प्रियंका जी,
2: नमस्ते मैम।
1: कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं।
1: बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज हमारी बहुत सारी श्रोता हैं, हमारी ऐसी सखियां जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, वो आज बहुत ज्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपने एक इतने अच्छे काम की शुरुआत करी है। आप डे केयर चलाती हैं, आप क्रैच चलाती हैं, तो आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: देखिए ये काम पहले से मैंने कभी सोच के नहीं रखा था कि मैं करूंगी ऐसा कुछ काम। बस मन में इतना था कि बच्चों के सामने मुझे कुछ करना है।
1: जी
2: ऐसा ही था कि स्कूल जॉब या वैसा कुछ नहीं करना है जिसमें मुझे बंधी बधाई

0: जी नहीं पड़े।
1: जी
0: मुझे ऐसा था कि मेरे को अपने घर को भी देखना था, सब कुछ करना था, तो फिर मुझे ये एक ऑप्शन सही लगा। हालांकि इस शुरुआत किसी और तरीके से हुई थी। मेरे एक ब्रदर हैं, डॉक्टर प्रदीप जैन है, वो पीडियाट्रिशियन है,
1: जी
0: वो मेरे पीछे लगे हुए थे कि तुमको ये काम करना चाहिए। बट शुरुआती दिनों में मैं इस चीज से कन्विंस नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी इस चीज को। बट इवेंचुअली धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी और हमने ये स्टार्ट कर दिया।
1: ओके, लेकिन क्या होता है, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना प्रियंका जी, तो हमें कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको
0: जी
1: भी अपने फील्ड में कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा होगा।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत चुनौतियां आई थी। एक्चुअली मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था, तो मैंने एक इसकी शुरुआत करी थी टॉय लाइब्रेरी से। टॉय लाइब्रेरी एक जो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था,
1: जी
0: जैसे कि हम बुक्स एक्सचेंज करते हैं, उस तरह से हम टॉयज एक्सचेंज करते थे।
1: टॉयज एक्सचेंज करते हैं, वाह जी
0: जी, ये आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट था, जब मैंने 2010-11 के लेट 2010 के करीब स्टार्ट किया था हमने,
1: जी
0: तब ये कॉन्सेप्ट जोधपुर के लिए बहुत नया था, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत समय से पहले का कॉन्सेप्ट था।
1: जी
0: तो शुरुआत में तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट मिला इस चीज को देख के कि ये नए नए बच्चों के लिए टॉयज आ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। बट धीरे धीरे धीरे करके बच्चों को चाहिए कि टॉयज हमारे साथ कोई खेले। बड़े
1: जी
0: लोग इतने बिजी, मदर्स इतनी बिजी हैं कि वो खेल नहीं पाती थी, तो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये तो बच्चे के साथ खेलेगा कौन।
1: जी
0: तो हमने इसको अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश की। हमने कहा कि आप बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम खेलेंगे उनके साथ में, अगर आपके पास में टाइम नहीं है खेलने का। एंड धीरे धीरे बच्चे आने लगे, पेरेंट्स को भी अच्छा लगने लगा, और उनको लगा कि भाई ठीक है, 1-2 घंटे हम भी अपने काम कर लेते हैं और बच्चा भी हमारा सेफ जगह पे है और एंजॉय भी कर रहा है, तो
1: जी
0: फिर हम वहां छोड़ देते हैं बच्चे को। तो एक्चुअल में इस डे केयर की शुरुआत का फर्स्ट स्टेप ये टॉय लाइब्रेरी रहा, जो कि इवेंचुअली डे केयर में कन्वर्ट हो गया।
1: ओके, वेरी नाइस आइडिया।
0: तो इसी तरह से ये हम आगे बढ़ते चले, धीरे धीरे एक ईंट से ईंट जुड़ती गई और हम आगे चलते गए।
1: ओके, लेकिन क्या होता है प्रिया जी के, आजकल जैसे कोई देखता है अरे बच्चे हम रख लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो
0: जी
1: डे केयर चलाने में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है?
0: देखिए मैम, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनकी भी ये सोच रहती है कि बच्चे ही तो रखने हैं, वो एक मैं अलग तरह से इस चीज को बोलना चाहूंगी
1: जी
0: कि बच्चे हैं बच्चे, हम किसी के जिगर के टुकड़े को हम अपने पास रख रहे हैं, उसको उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होके अपने बच्चों से भी बढ़कर उसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मुझे लगा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल टीचर्स होती हैं या नर्सरी टीचर्स होती हैं वो, या फिर हमारे डे केयर के केयरकर्स की बात करें आप,
1: जी
0: हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। क्योंकि एक बच्चे को पहले, कई बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं उनका पहला कदम भी हम ही बढ़वाते हैं,
1: जी
0: हमारे सामने वो लेता है, बट लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है छोटा बच्चा ही तो है, उसको क्या करना है, कुछ खास काम नहीं है। लेकिन हमें उसकी एक-एक माइलस्टोन्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है, उस पे उसको बढ़ाना होता है, एंड उसकी छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों को हम नए रूप में उसको बढ़ता हुआ देखते हैं। तो जो केयर टेकर्स और स्कूल टीचर्स, प्री स्कूल टीचर्स होती हैं, उनको ये काम करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, और सारे पेरेंट्स के ट्रस्ट के साथ।
1: बिल्कुल, ये बात तो है प्रियंका जी, लेकिन जैसे आप बता रही आपके पास छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, है ना, तो ऐसे
0: जी
1: छोटे छोटे बच्चे की देखभाल में आप किन विशेष बातों का ध्यान रखती हैं?
0: देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कई बच्चे

0: छह महीने की उम्र से भी आ जाए।
1: जी
0: पेरेंट्स की मदर्स की मैटरनिटी लीव्स होती हैं वो 6 मंथ्स की रहती है जनरली मैक्सिमम जॉब्स में या वर्क कल्चर में।
1: जी
0: तो वो बच्चा जो खाना भी बस शुरू ही किया होता है तभी से हमारे पास आ जाता है।
1: जी
0: तो उस बच्चे के लिए हमें स्पेशल मतलब उसका हाइजीन मेंटेन करना, उसके लिए उसकी एक्स्ट्रा केयर करना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और सबसे बड़ी बात है उस बच्चे से ज्यादा उस माँ को संभालना, उसकी मदर की माइंडसेट को संभालना, क्योंकि उस मदर के लिए आसान नहीं है कि अपने बच्चे को किसी अनजान
1: जगह
0: हाथों में
1: छोड़
0: देकर
1: दें। जी
0: छोड़कर वो
1: जी
0: अपने काम पर निष्फिक्र होके रह सके। तो
1: जी
0: ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है या सबसे बड़ा हमारा माइंड क्राइटेरिया रहता है कि उसके मदर को तसल्ली रहनी चाहिए कि उसका बच्चा एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में है और जहाँ पे उसको भरपूर प्यार मिल रहा है, वो घर के माहौल में ही बड़ा हो रहा है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रियंका जी, क्योंकि कोई भी माता होगी है ना, माता के पिता भी होंगे जो वहां छोड़ते होंगे आपके वहां पे बच्चों को भी, तो सबके
0: जी
1: दिमाग में यही रहता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं, उसको कुछ हो ना जाए, चोट नहीं लग
0: बिल्कुल
1: जाए या उसकी तबीयत खराब नहीं हो जाए। तो
0: जी।
1: ऐसे में फिर आप बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रखती हैं?
0: देखिए हम लोग एक तो बहुत ही जो कि काम को बहुत समय से कर रहे हैं, या पहले हम अपने स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं
1: जी
0: कि वो उनको किस परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है।
1: जी
0: दूसरा, रेशियो हम स्टाफ और किड्स का उस अकॉर्डिंग रखते हैं कि वो इजीली मैनेज कर पाए बच्चों को। एंड हाइजीन एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है
1: जी
0: कि साफ सुथरा माहौल जिसके अंदर बच्चा आराम से, बच्चे नीचे लौटते भी हैं, खेलते भी हैं, हम नहीं चाहते हम कि हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करें कि ये नहीं करो वो नहीं करो। तो हम बच्चों को भरपूर, बच्चों को भागने दौड़ने सब तरह की जगह चाहिए होती है,
1: जी
0: लेकिन उसी समय हमें ये भी अश्योर करना पड़ता है कि बच्चे सेफ रहें, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। तो
1: जी
0: उसके लिए हमें बच्चे को डिसिप्लिन में भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। एंड जो एकदम ही छोटे बच्चे हैं उनको हम ऑब्वियसली गोद में रख के या पालनों में या उनके स्ट्रॉलर्स में इस तरह से रख के या अलग रूम में करके ही उनको हम लोग सेफ कर पाते हैं।
1: अच्छा, ऐसा होता है ना प्रियंका जी के घर में अगर 3-4 बच्चे हैं है ना, तो सभी बच्चों के स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अब
0: बिल्कुल
1: आपके उस स्कूल में, डे केयर में स्पेशली और क्रैच में इतने सारे बच्चे होंगे तो सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो फिर इतने
0: जी।
1: सारे बच्चों को आप कैसे संभालती हैं?
0: मैं ये बोलना चाहूंगी मैम कि एवरी चाइल्ड इज अ न्यू लर्निंग फॉर अस। हर बच्चा अलग होता है, अलग परिवेश से आया है, अलग माहौल में पला बड़ा है, उसके
1: जी
0: घर का माहौल एकदम अलग है। कुछ
1: जी
0: बच्चे बच्चों को लैंग्वेज इश्यू होता है बहुत। इनफैक्ट हमारे पास कई बच्चे होते हैं जो साउथ से आते हैं या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के आते हैं, जो उन्हें हिंदी तक नहीं आती है।
1: जी
0: तो वो ये सारे बच्चे हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं कि इनको हम किस तरह से अडेप्ट करें, हम वो हमें, इनफैक्ट मैं करना चाहूंगी अपने आप को कि वो हमें कैसे अडॉप्ट कर लें,
1: जी
0: क्योंकि वो जब तक हमसे सिक्योर नहीं
1: फील
0: फील करेंगे वो
1: करेंगे।
0: खुश नहीं रहेंगे बच्चे। तो
1: जी
0: हम लोगों को थोड़े दिन उस बच्चे को, हर एक बच्चे को समझने में लगते हैं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की मदर हमारे साथ में रुके,
1: जी
0: 3-4 दिन, हफ्ता भर एटलीस्ट रुके, तो जिससे कि हम उस बच्चे की हैबिट्स को थोड़ा सा समझ पाए। फिर उसमें कुछ बच्चे थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं,
1: जी
0: तो हमें उस तरीके से ही उनको हैंडल करना पड़ता है कि धीरे धीरे बच्चों बच्चों को एक्चुअल में आदत नहीं होती है कि ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि
1: सिंगल
0: अधिकतर बच्चे
1: फैमिली में।
0: न्यूक्लियर फैमिलीज में रह
1: जी
0: रहे हैं।
1: जी
0: एंड एक्चुअल में न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले बच्चों को ही डे केयर में आने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी है तो शायद हमारी जरूरत भी नहीं होती है, हम लोग लास्ट ऑप्शन में ही आते हैं फ्रेंकली
1: जी
0: स्पीकिंग। तो उस केस में यही होता है कि उन बच्चों को, हर बच्चा अपने घर का राजा है ये मान लीजिए,
1: जी
0: क्योंकि जिस चीज की उसको जरूरत है उसको बिना मांगे मिल जाती है या जिस चीज पर उसने हाथ रख दिया वो उसी की चीज है। पर जब वो बच्चा ग्रुप में रहने आता है तो उसको शेयरिंग भी नहीं आती है, उसको बच्चों के साथ खेलना ही नहीं आता है। तो इसलिए हम इन्हीं

0: एक्चुअली थोड़ा दिन दो दिन बच्चे की मदर जिससे भी बच्चा एक्वेंटेड है, मे बी उनकी दादी हो सकती है या नानी हो सकती है या और भी कोई रिलेटिव या कोई भी जिससे बच्चा एक्वेंटेड है, उनको हम रोकते हैं,
1: जी
0: धीरे धीरे उसको बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं
1: जी
0: एंड उस माहौल हमें भी समझ आने लग जाता है उस बच्चे का बेसिक नेचर क्या है, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम उसको हैंडल करते हैं, उसको उसके पसंद नापसंद के हिसाब से शुरुआत के दिन, और फिर धीरे धीरे वो हमारे माहौल में ढल जाता है बच्चा।
1: तो ऐसा होता है ना प्रियंका जी, जैसे कि घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने रखते हैं ना, कि भाई बच्चा ये खेले या उससे परेशान नहीं हो या इससे बोर नहीं हो। आपसे आज बात करके ना ऐसा फील हो रहा है कि जो सखिया इस कार्यक्रम को आज सुन रही है ना, उनकी आधी टेंशन तो खत्म हो गई है कि अब उनको अपने बच्चे को अगर ऑफिस जा रही हैं या किसी काम से जा रही हैं तो निश्चिंत होकर वो एक अच्छे से डे केयर में, स्पेशली आपके डे केयर में आराम से छोड़ सकती हैं, क्योंकि बच्चे आपके वहाँ पे अच्छे से आपसे अटैच्ड हो जाते हैं, आप कैमरे की फैसिलिटी भी देती हैं और इमरजेंसी हो तो आप फूड वगैरह भी प्रोवाइड करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब
0: जी
1: मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी की, कि अब ये प्रोग्राम हमारी बहुत सारी सखियां सुन रही हैं, बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे प्यारे प्यारे, कुछ सखियां जो ये सोच रही होंगी कि आपके जैसा कुछ क्रिएटिव वर्क करें, तो आप समाज को और हमारे माता पिता को आज क्या संदेश देना चाहती है, जो भी बच्चों के माता पिता हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं है ना, उन सबको
0: जी
1: आप क्या संदेश देना चाहती है?
0: मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग एक आर्ट है,
1: जी
0: और इनफैक्ट आज के जमाने की पेरेंटिंग और जो कि पहले कुछ सालों पहले पेरेंटिंग हुआ करती थी उसमें बहुत फर्क आ गया है। ये
1: जी
0: आप शायद आप भी मुझसे अग्री करेंगे
1: जी
0: कि जो पहले के हमारे माता पिता हुआ करते थे या एक जेनरेशन पहले एक
1: जी
0: डेकेड पहले वाले माता पिता की सोच अपब्रिंगिंग या करने का तरीका और आज के माता पिता का तरीका बहुत बहुत बदल गया है।
1: जी
0: तो यही चाहूंगी कि बस आप अपने बच्चे, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है इसमें पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, जो
1: जी
0: पहले हम किसी पर भी आंख मीच के भरोसा करके हम अपने बच्चों को किसी के भी हवाले करके हम निशफिकर हो जाते थे, आज हम किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं।
1: जी
0: इस वजह से हमें बच्चों को अकेला छोड़ना या किसी के पास में छोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया हमारे लिए।
1: जी
0: तो आप अगर वर्किंग हैं तो मैं अगेन वही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो इससे लकी आप बिल्कुल भी नहीं है। दादी नानी का प्यार जो अगर को मिल रहा है
1: जी
0: और उनकी छत्र छाया में बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
1: जी
0: एंड हमारा नंबर लास्ट में आता है जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। तो
1: जी
0: लेकिन हाँ, मैं बस इतना बोलूंगी कि हम दादी नानी की जगह तो नहीं ले सकते, माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते,
1: जी
0: लेकिन हाँ हम सिन बेस्ट जरूर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन हम नया कुछ सोच सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि हम आपके बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दे पाए।
1: जी प्रियंका जी, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी और इस कार्यक्रम को सुनने वाली सभी सखियों को भी, और आपने इतना अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
2: सखियों, अभी आपने बातचीत सुनी प्रियंका जैन की स्वप्निला श्रीवास्तव से, जिसका विषय था डे केयर में और क्रैच में बच्चों की सुरक्षा, और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: स्वप्निला, आज सुबह जब स्टूडियो आने के लिए तैयार हो रही थी ना, तो एक अलमारी में से मेरी एक बहुत पुरानी सी डायरी नीचे गिर गई, जिसमें मेरे स्कूल के दिनों की तस्वीरें थी। बस उन्हें देखते ही रह गई और सोचने लगी कि वक्त कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ जाता है।
1: बिल्कुल वंदना, अब तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। कल रात को है ना, मैं भी मेरी बेटी की एक पुरानी सी फ्रॉक देख रही थी और उसको अब आती भी नहीं है घुटने तक भी। सच में जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो लगता है कि पता नहीं कब बड़े होंगे, और जब बड़े होते हैं ना तो लगता है अरे यार बच्चा छोटा ही रहता तो कितना अच्छा रहता।
0: बिल्कुल, और इसी बदलाव के साथ कितनी सारी जो चीजें होती है ना, वो एक साथ बदल जाती है। जब वो घुटनों के बल चलते थे, तब उनकी जरूरतें सिर्फ दूध और खिलौने थी, लेकिन आज जो है ना, उनकी जैसे जैसे उनकी उम्र बदलती गई, उनकी जरूरतें भी बदलती गई।
1: ये बात तो है ही वंदना, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी रुचियां, उसकी आवश्यकताएं सब अलग अलग होती है। और ऐसे में हर माता पिता का ये दायित्व रहता है कि वो हर बच्चे को उसकी उम्र, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसकी जरूरत को समझे और उसका उचित मार्गदर्शन भी करे। लेकिन क्या होता है वंदना कि मैंने भी ये महसूस किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें हमारी ना शारीरिक मौजूदगी चाहिए होती है। उनको लगता है मेरे
0: बिल्कुल
1: मम्मी मेरे पास पास रहे, अपने पीछे पीछे घूमते रहते
0: बिल्कुल
1: हैं, है ना। पर जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होने लगता है ना, उसको क्या है धीरे धीरे स्पेस की जरूरत पड़ जाती है। छोटा बच्चे को तो बहुत प्यार चाहिए होता है, बहुत देखभाल चाहिए होती है ना। पर जब वो धीरे धीरे सीखने लगता है, खेलने लगता है, अपनी बात व्यक्त करने लगता है, तो फिर लगता है यार अब तो हमारा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।
0: और अब हमारी सखियों को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो वंदना हम नारी वाटिका में बात कर रहे हैं प्यारी प्यारे बच्चों की, और जो बच्चे होते हैं ना उनका तो गुस्सा भी बहुत ही अच्छा वाला होता है, एकदम मस्त वाला कि वो कभी जिद करता है, कभी चुप रह के अपना गुस्सा व्यक्त करता है। कभी कभी हम क्या होता है कि हमें ऐसा भी लगता है कि वो शायद डर के भी अपनी मन की बात नहीं बता रहा है ऐसे। तो हमें तो ऐसा लगता है भाई बच्चे को तो समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर गुस्सा करें।
8: पहले तो सच कहूँ ना स्वप्निला, मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता था बच्चों की छोटी छोटी बातों पे, या वो चिड़चिड़े हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने भी समझा कि बच्चों के इस बदलते व्यवहार के पीछे

0: हमेशा कोई ना कोई भावनात्मक कारण हो सकता है. स्कूल में किसी दोस्त से अनबन हो गई हो उनकी, या फिर पढ़ाई का भी कोई तनाव हो. जो बच्चे जानबूझकर हमेशा हमें परेशान नहीं करते, वो एक इशारा होता है उनका अपनी उलझनें जाहिर करने
1: ये
0: का.
1: बात तो है ही वंदना। ऐसा होता है कि जैसे हम अपना मोबाइल चला रहे हैं, है ना, बिजी है, लेकिन वो हमसे कुछ बात करना चाह रहा है, हम
0: बिल्कुल.
1: सुन नहीं रहे हैं, तो फिर वो हमें धीरे धीरे मारना शुरू करता है, गुस्सा करना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है। तो बच्चा चाहता है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसकी बात को सुना जाए। हम सुनेंगे तो वो हमसे दिल से कनेक्ट भी होता है। हमारी क्या गलती, हम बच्चे की तरफ तो ध्यान देते नहीं है, जिस वजह से बच्चा अपनी जो मन की बात होता है वो ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। फिर होती है गलतफहमियां बच्चे के बीच में और उसके मम्मी पापा के बीच में।
0: एक्चुअली ना, जिसे हम बदतमीजी समझ लेते हैं, वो असल में उनकी मदद की एक पुकार होती है. इसका मतलब ये होता है कि उन पर हमें चिल्लाने डांटने की बजाय उनके रुककर पूरी उनकी बात सुननी चाहिए. और बिना जज किए जब हम उनकी बात सुनते हैं ना, तो उनका आधा गुस्सा वैसे ही शांत हो जाता है और अपनी बात वो खुलकर सामने रख पाते हैं.
1: ये बात तो है ही वंदना कि जब है ना बच्चे की, चाहे छोटा बच्चा है क्यों ना हो, 1-2 साल का, अगर हम उसकी बात भी बहुत अच्छे से सुनते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। और हम उसको भी अगर अवॉइड करते हैं ना, तो वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है, गुस्सा, चिल्लाना, चीजें
0: जी.
1: फेंकना। तो ये बात तो सही है कि अगर हम चाहते बच्चा खुलकर हमसे बात करे, तो हमें भी खुलकर उसको, उसके साथ में, उसकी भावनाओं के साथ में जुड़ना होगा।

0: स्वप्निला, एक बात बताओ, हम पेरेंट्स अनजाने में कई बार बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि जब भी हमारा बच्चा किसी चीज में कम रह जाता है या फिर कोई कम मतलब कुछ कम कर पाता है तो हम ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और फट से उसकी तुलना करने लगते हैं कि देखो फलाने का बेटा या बेटी कितना अच्छा कर रहा
1: फलाने की तो छोड़ो, हम तो भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों के बच्चों से भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं। और दिक्कत यह है कि हम ये नहीं सोचते कि अनजाने में हमारे ही बच्चे के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उसमें अंदर ही अंदर एक हीन भावना हो सकती है। हमें ये समझना चाहिए क्योंकि
0: बिल्कुल.
1: हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है वंदना, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी में, है ना। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि उसको ऐसा नेगेटिव जो हम व्यू देते हैं वो देने की जगह हमें उसकी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए। कह रहे भाई गणित में कम लाया कोई बात नहीं, हिंदी में तो अच्छे लाया है।
0: क्योंकि जो ये तुलना का जहर होता है ना, ये बच्चों को अंदर से तोड़ देता है. और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा भी यूनिक है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई खूबी है. कि भाई मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा, इंग्लिश में अच्छा, या एकेडमिक में अच्छा नहीं कर रहा, तो वो शायद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो.
1: बिल्कुल, वरना हो सकता है वो संगीत में अच्छा हो, चित्रकला में अच्छा हो, नृत्य में अच्छा हो, बहुत सारी गतिविधियां हैं कि वो उसमें अच्छा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो बच्चों को पहचानना चाहिए कि उसका किस में इंटरेस्ट है और उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए वो किस क्षेत्र में जाना पसंद करता है, ताकि उसमें आत्मविश्वास भी आए, है ना। और
0: बिल्कुल.
1: वो ऐसी भावना से ग्रसित नहीं हो कि उसे कुछ नहीं आता। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप में उसकी मदद करनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल. क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं जानते या कुछ समझते नहीं है. और हम पेरेंट्स की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनकी प्रतिभा को समझें, या जो उनके अंदर कोई भी आर्ट है उसको समझें, उसे निखारें और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे वो आगे बढ़ सके.
1: वंदना, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा सबसे ज्यादा विश्वास करता है अपने माता पिता पे, और जो भरोसे की नींव होती है ना बच्चे में, वो आती है माता पिता से।
0: जी
1: तो जो माता पिता कह रहे हैं वो बच्चे के लिए सही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आपको ईश्वर का दर्जा दे रहा है तो हमें भी बच्चे को उस हिसाब से उसके मन की बात को समझना चाहिए, और उसके जो मन की भावना है कि वो हमें ईश्वर समझ रहा है, तो उस लेवल पे हम उसे लेके आए कि भाई हम तेरी बात को सुन रहे हैं, हम तेरी बात को समझ रहे हैं।

0: वंदना, हमने तो बातें तो बहुत कर ली बच्चों की, लेकिन हमारे बच्चे बड़े भी तो होंगे, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनको अपना स्वतंत्र एनवायरनमेंट चाहिए, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ साथ उनको चाहिए कि मन से तो ऐसे सोचते कि हमारे पेरेंट्स हमसे दोस्तों की तरह व्यवहार करें, हमें सहयोग दें, हम पर विश्वास भी करें, है ना।
1: हाँ, आप बात कर रहे हो टीनेजर्स की। ये सचमुच एक संवेदनशील उम्र होती है, बहुत इसमें बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं, और क्योंकि उनके जो शरीर और जो उनकी पर्सनालिटी जो होती है उसमें, और
0: बहुत हार्मोन्स भी चेंज
1: बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो वो खुद को समझने में बहुत उनको ही मुश्किलें आने लगती है। तो हमें तो उनको कॉपरेट करना चाहिए, हमें उनको मतलब एक बॉसी नेचर नहीं रखना चाहिए कि उनके साथ हम बॉस की तरह बिहेव करें, हमें उनका एक दोस्त बन के चलना चाहिए ताकि वो अपनी हर बात हमसे शेयर कर सके।
0: बात तो सही है, ऐसा नहीं हो कि हमारे जो युवा बच्चे वो मोबाइल के अंदर ही रह जाएं, हमें उनको वो समय देना होगा, हमें उन्हें स्पेस भी देना होगा ताकि वो अपनी बातें हमसे खुल के कर सकें, क्योंकि इस एज में उनको हर चीज़ हमसे खुलकर डिस्कस करनी जरूरी है।
1: और जरूरी है कि हम उनका भरोसा जीतें ताकि कोई भी गलती हो तो वो उसे छुपाए नहीं और हमसे हर चीज़ शेयर कर सकें।
0: सही बात है, बिल्कुल। तो वरना बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हम अब हमारे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं एक प्यारे से गीत का।

0: तो वरना हमने बहुत सारी बातें करी हैं बच्चों से, युवा बच्चों की, सब की, लेकिन मुझे जहां तक ये समझ में आया कि एक परिवार परिवार तब बनता है जब हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताओं को, उनके व्यवहार को समझना होगा, उनकी बात को सुनना होगा, उनके साथ तुलना नहीं करनी होगी, और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ बातचीत करके, संवाद बना के उनका विश्वास स्थापित करना होगा। तभी जाके अगर हम उनको समय दे पाएंगे फैमिली के अंदर, तो हम अच्छे से अपने परिवार की नींव रख पाएंगे।
1: बिल्कुल, बच्चे हमारा भविष्य भविष्य हैं, और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की शुरुआत हमारे अपने घर से और हमारे अपने व्यवहार से ही हो सकती है। और जो ये एक हमारे लिए भी चुनौती है, क्योंकि हमारे खुद के धैर्य की ये परीक्षा है। तो उम्मीद है आज की इस सारी बातचीत को हमारी सखियां समझ गई होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होंगे, और अब जो कहने का मतलब है वो मैं समझ गई कि आप ये कहना चाह रही हो कि अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना तो हम गर्व से कह सके इट्स माय फैमिली।

0: सखियों आज की दिन हम याद कर रहे हैं एक अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता सफल निर्देशक और समर्पित समाज सेवी जिनकी आज जयंती है। हम बात कर रहे हैं आज सुनील दत्त जी की।
1: भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और सुनील दत्त ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1955 में की और उनकी जो मतलब शीघ्र ही उन्हें हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनेता में भी शामिल कर लिया गया। उनकी प्रमुख फिल्में थी मदर इंडिया, सुजाता, मुझे जीने दो, पड़ोसन और वक्त।
0: बिल्कुल, और उनकी अभिनय की प्रतिभा, सादगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व से उन्होंने दर्शकों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। और फिल्म मदर इंडिया के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस से हुई, जिनसे विवाह के बाद में उनकी जोड़ी

को सिनेमा के अंदर सबसे सम्मानित जोड़ी में गिना जाता रहा और सुनील दत्त जी का भारतीय सिनेमा और समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा जो सहयोग रहा है वो सदैव सम्मान के साथ याद किए जाते रहेंगे।

0: सखियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज HPT पर हमारे साथ थे विक्रम सिंह भाटी, फारूक अहमद शेख, कंट्रोल रूम से हमारा साथ दिया दिलीप सिंह परमार ने, और कंसोल से प्यारे प्यारे गीतों को आप तक पहुंचाया कपिल ने, और कार्यक्रम की परिकल्पना की मनीष जी सोलंकी ने, और प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, मैं वंदना
1: और मैं स्वप्नीला, नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारीवादी का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया हिंदी समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में

0: निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल

0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी

0: हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं यह बात साफ-साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से यह बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

तालियां राम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे इस झूठी दुनिया को छोड़वा।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
4: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मशरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हजरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।

0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
4: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
5: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
4: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
5: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
4: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का, और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद पक्षी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाह। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवद और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत। चाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: इन शहजादियों से भलाई कैसे हो सकता है?

0: लाल किले के अस्फरे दरबार में नाजी।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुर्म है।
3: हाँ।
2: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
3: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
2: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
3: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
2: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
3: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी, आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमीबोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म आली जा।

0: मिट जाए।
1: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
2: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
1: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
2: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
1: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
2: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेहयाब होंगे, इन 7-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
1: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
2: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
1: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
2: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
1: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
2: और अब क्या हुआ उसको?
1: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
2: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी।
2: ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
2: इस वक्त वो कहां है?
1: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
2: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
1: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
2: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलमपना को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कुछ भी कर चुके थे।
2: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
1: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
3: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
2: कौन? सकीना बेगम? यहां फौरन भेजो।
3: जी जहांपना।
4: आलमपना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
2: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
4: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ कोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
2: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
4: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 कोरे सवार और मिले, और बंदूकों के

0: पैर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
0: जी नहीं आलमपना।
1: ओह, वो कमीनी कहाँ है?
0: जी बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
2: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदजात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ बराबर के खेमे में है वो बदजात।
2: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं।
0: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहाँ हुजूर का कयाम हो वहाँ मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
0: जैसी आलमपना की मर्जी।
2: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाह के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुंडो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
2: ओह, जहां पना, ये तो अंग्रेजों की तोपें। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
2: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़े जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त।

0: ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आ लीजिए।

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बॉस करेगा, योर मैजेस्टी के रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खान किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है।

0: मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
1: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

0: गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: एक्शन।
4: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
5: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े

0: एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस, टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
1: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुँह लग गया।
0: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं,
1: वो पढ़े लिखे भी नहीं।
0: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और रेमेडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान या यूं कह लीजिए

0: नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है?
1: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
0: अच्छा।
1: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन वैसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था
0: उस जमाने में, तो
1: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला करते, बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
0: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
1: वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में? किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था, और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके। आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
0: इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
1: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम,
0: ओके, बोनियम का, ओके,
1: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग, ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का खया

0: सौतन
1: सौतन तो वो पिक्चर मैंने वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है। हाँ। अजीब दास्तां मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों वो हर गाना जो आता था वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात तक कि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट बहुत ही पतली एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मारनी पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर और मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था।
0: फिर
1: इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाएं, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया।

0: तो मेरी लाइटिंग 5 साल और बढ़ा दी। बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी ले, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया। बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
1: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
0: होगी, 17 साल की थी,
1: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं।
0: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका, उनके पास टाइम ही होता था, तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे, उन्होंने कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान, हाँ, के बारे में दिलचस्प, हाँ, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
0: अच्छा।
1: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है, और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया, और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया, और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट में फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीम, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक, मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने कहा नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग, मेरे दो मेरे भाई बहन, तुमने तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी,
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है,
0: हाँ,
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
0: हाँ,
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाएगा।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है, हाँ, लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े, हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए, बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल

0: मैनेजमेंट क्या तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता, वो अकल बाद में, फिर जब जमीन पर मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मुझे फिल्म करो। नहीं, मेरा दिमाग सपनों में

अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो

0: गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर।
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं जिंदगी

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे ठीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चक ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, देखते क्या है। तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है। तो कभी वो लत या लगाम लगा

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोच रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था। उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे गया। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
0: मैंने आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला, क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूंगा, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स

0: है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है वो वाला डांस सेक्शन,
0: वो वाला। तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे लेकिन अभी पहले इसको
0: हाँ। तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से। नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं ये तुम पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष से मिला और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में कहानी है तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होते हैं,
0: एब्सोल्युटली।
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बिठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वॉज सो स्वीट क्योंकि मैं बहुत आई थिंक ओनली 24 ईयर्स, सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिनसी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली। गाना ARM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सिंह कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है और ये क्या बोलते हैं ना ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो भी मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक है तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बताया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: तो और बड़ी बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर हाँ। की और आशुतोष की भी और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात

0: है उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, क्षमा कीजिए, शाम के 5 बज चुके हैं। युवा साथी, आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ये वाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और आज यहाँ मेरे साथ है,
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। वैसे दोस्तों, हमें पता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है एनर्जी आपकी खत्म हो चुकी होगी, ऑफिस का वर्कलोड और इतना सारा काम। लेकिन कोई बात नहीं, आज की जो प्लेलिस्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए, उससे एनर्जी फिर से आ जाएगी और आप अपने आप को फिर से फ्रेश फील करेंगे। तो क्यों ना डॉली, आज का ये पहला गाना जो है चला दिया जाए।
0: बिल्कुल

0: पा रहे हैं। तो ऐसे में तुम क्या कहना चाहोगी?
1: मेरा तो यही कहना है कि देखो जिंदगी में अगर हमें मजे करने ना, और मजे की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मजा किसी जगह में नहीं होता है, मजा एक्चुअली लोगों में होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हाल फिलहाल आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त जिनसे आप आज अभी मिल सकते हैं, आप उनसे मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और साथ में दुखी हुए।
0: और वो तो है ही। और सही कहा तुमने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद के माइंड को जो है वो मतलब खुद को पहचानने की जरूरत है, और जिस टाइम में आप जी रहे हैं उस टाइम में रहने की जरूरत है। बहुत सारे टेंशंस, बहुत सारे जो भी काम है, आपको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए साइड में रखना आना चाहिए, और अपनी फैमिली को टाइम थोड़ा सा दे देंगे
1: बिल्कुल,
0: तो आप
1: फैमिली
0: ऐसे ही
1: को,
0: इंजॉय करने लग जाएंगे, और वो टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने
1: बिल्कुल
0: वाला है।
1: फैमिली को ही नहीं, खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है।

0: बैक टू यू वानी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम दो रेडियो बडीज आ चुके हैं आपका आज का ये दिन सैटरडे वीकेंड बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए।
1: जी हाँ दोस्तों, और वीकेंड की बात की है डॉली तुमने, तो अभी जो है काफ़ी लोगों के जो है ना वेकेशंस चल रहे हैं ना, और हम अपने आसपास देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है बाहर वीकेंड्स पे वेकेशंस पे बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अलग अलग जगह जो है इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे गेम्स वगैरह या फिर अपनी हॉबीज़ को जो है पहचान रहे हैं और उन हॉबीज़ पे जो है काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि अभी भी घर में हैं और प्लानिंग ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जाएं जाएं जाएं, लेकिन उनके जो ये डेली रूटीन है, स्केड्यूल है, उनके पीछे वो जा ही नहीं पा रहे हैं।
0: बिल्कुल सोचते हैं कि हमारे तो ये काम ही ख़त्म नहीं थे और बाकी दोस्त वगैरह उनको देखो बढ़िया घूमने गए हैं, बढ़िया मज़े कर रहे हैं।
1: सोचते भी हैं ये देखकर कि अरे यार ये लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, और जी भी जलता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत जलन नहीं होती, लेकिन अपने काम से हट ही नहीं।

0: दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने उबासी ले रहा हो और कुछ सेकंड्स में ही आपको भी उबासी आ जाए?
1: बिल्कुल दोस्तों, और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमें लगता है कि इत्तेफाक है या फिर सामने वाले को हमारी

0: बातें बड़ी बोरिंग लग रही हैं, इसलिए शायद उसको नींद आने लगी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है.
1: और अगर साइंटिस्ट की अपन बात करें तो साइंटिस्ट भी आज भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाते.
0: बिल्कुल, लेकिन कई रिसर्च स्टडीज कहती है कि कंटेजियस यॉनिंग यानी कि उबासी लेना, दूसरों को उबासी लेते देखकर हमें भी उबासी आने लगती है, हमारे दिमाग में एक कनेक्शन सा जुड़ जाता है, तब जाके हमारे साथ ऐसा होता है. हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स भी होते हैं, उनको शायद मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है, तो वो जब कनेक्ट करते हैं आपस में तो अननोइंगली हम सामने वाले को कॉपी करने लगते हैं.
1: और अब मैंने बार बार हम लोगों ने जो उबासी का जिक्र किया है, तो अगर आपको उबासी आती है तो आप खुद को अकेला ना समझे, क्योंकि ये सबके साथ होता है. क्यों रवि?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है. हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को कॉपी करने लगता है, तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये ना समझे कि हमारी बातें सुन के सामने वाला बोर हो रहा है.
1: हाँ, फिर तो मुझे भी उबासी आ गई.
0: तो चलो इसी के चलते ये गाना सुन लेते हैं.

0: वैसे डॉली, अभी स्ट्राइक से पहले हम जो है उबासी की बातें कर रहे थे, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लगता है विनीता अब हमें चाय की बातें शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि नींद बड़ी आने लगी है और आजकल तो गर्मियों के दिन चल रहे हैं और दिन में दोपहर वाली नींद बहुत ही शानदार होती है वो नींद, तो इसी के चलते थोड़ी चाय पे बातें हो जाए।
0: बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो लोग अजनबी हो सकते हैं, लेकिन एक कप चाय उन्हें दोस्त बना सकती है। आज बात करते हैं चाय और उनसे जुड़ी यादों की।
1: बिल्कुल, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है दोस्तों, अगर हम बात करें चाय की तो सुबह की शुरुआत चाय से,
0: एग्जाम की तैयारी के बीच चाय,
1: ऑफिस ब्रेक में चाय,
0: बारिश और पकौड़ों के साथ चाय।
1: दोस्तों की लंबी लंबी बातों के बीच चाय।
0: बिल्कुल दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि हम सभी के इमोशंस का एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम होती है और हमें लगता है इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, और थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ हम बैठते हैं और एक सिप जब हम चाय का लेते हैं तब एकदम से दिमाग में बत्ती जलती है और सोल्यूशन मिल जाता है।
0: बिल्कुल, और फिलहाल जो है मुझे भी सोल्यूशन मिल चुका है डॉली, कि हमारे दोस्तों के हम तो जो है इनसे बातें करने में बिजी हैं, कोई बात नहीं, हमें उबासी नहीं आएगी, लेकिन हमें जो सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उनके हाथ में अगर एक कप चाय हो और पास में पकौड़े हो और फिर ये प्लेलिस्ट हो, क्या कहना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं हमारे इसी म्यूजिकल सफर की ओर।

0: वेलकम बैक टू युवानी. दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने की चाय की बातें और थोड़ी सी अब साइंस की बातें भी हो जाए. तो आपने कभी सुना है कि प्याज काटते ही आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं?
1: भाई साहब, खाना बनाना हो और प्याज ना हो ऐसा मुश्किल है, लेकिन प्याज काटते ही एक जो प्रॉब्लम है ना, वो हम सभी के साथ होती है.
0: बिल्कुल. और आंखों से आंसू निकलना हम सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट बना देता है प्याज को काटना.
1: तो क्या ये प्याज हमें इमोशनल कर देता है?
0: बिल्कुल नहीं, इसके पीछे भी एक साइंस छिपी हुई है विनीता. जब हम प्याज काटते हैं तो उसकी सेल्स टूट जाती है, और इन सेल्स के टूटने से एक केमिकल रिलीज होता है जो हवा में मिलकर एक गैस बनाता है. वो हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमारी आंखों के अंदर जो नमी जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है, और हमारी आंखों को लगता है कि बड़ी हार्मफुल सी चीज़ है, और तो उसके रिएक्शन में हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं.
1: तो डॉली, इससे बचाव भी तो हो सकता है ना, मतलब ऐसा कुछ करने से जिससे ये आंसू ना आए और हम बड़े आराम से जो है प्याज कट कर सकें. क्योंकि
0: बिल्कुल
1: प्याज काटना तो एक मतलब कट करने ही पड़ेंगे प्याज हर किसी को, क्योंकि सब्जी बनना इसके लिए पॉसिबल नहीं है इसके बिना ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तुमने विनीता. प्याज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी कुछ सोल्यूशन है, कुछ टिप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे इस प्रोसेस में हम थोड़ा सा अच्छे से हम ये काम कर सकते हैं. और वो ये है कि हम जो तेज़ धारदार चाकू हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं. हम प्याज को फ्रिज में ठंडा करने के बाद काटने पर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो गैस कम रिलीज होती है. हम फैन के सामने कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पानी में डालकर, ये थोड़ी थोड़ी सी
1: हाँ,
0: चीज़ें हैं इनको फॉलो
1: ये
0: करने से.
1: मैंने भी किया है वैसे.
0: ये तो काम करता है ना ये वाला?
1: हाँ
0: तो
1: हाँ बिल्कुल करता है.
0: बिल्कुल. और प्याज वैसे तो आपको रुलाना नहीं चाहता है लेकिन रुला देता है.
1: तो दोस्तों, अगली बार किचन में प्याज काटते वक्त आंसू आए तो समझ जाइए कि आपकी आंखें अपना सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव कर चुकी है.
0: बिल्कुल.

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: वेलकम बैक टू यू वाणी दोस्तों. दोस्तों पूरे हफ्ते पढ़ाई, काम, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच हम अक्सर थक जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिर से उठने की और फिर से वैसी ही एनर्जी फील करने की ज़रूरत होती है. तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी विनीता कोई शब्द होना चाहिए ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल है डॉली, ऐसे सिचुएशन के लिए भी एक वर्ड है, वो है रिजुविनेट.
0: वाओ, रिजुविनेट, इसका क्या मतलब होता है?
1: इसका मतलब होता है खुद को फिर से फ्रेश, एनर्जेटिक और मेंटली एक्टिव महसूस करना.
0: क्या बात है, अगर हिंदी में विनीता बात

0: इसका मीनिंग होता है कि नव ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि खुद को फिर से तरोताजा करना कह सकते हैं।
1: दोस्तों कभी कभी सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी आपको रिजुविनेट कर सकती है।
0: बिल्कुल, अपना फेवरेट गाना सुनना, किताबों को पढ़ना या दोस्तों से बातें करना भी आपको रिजुविनेटिंग फील करवा सकता है।
1: और इसके साथ ही नेचर के बीच थोड़ा समय बिताना और माइंड को रिजुविनेट करना।
0: बिल्कुल, और हम अब कई बार होता है ना कि हम अपने मोबाइल को तो रोज चार्ज करते ही हैं ऑफकोर्स, लेकिन खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता।
1: बिल्कुल। वैसे आप खुद को रिजुविनेट करने के लिए क्या करती हैं डॉली? म्यूजिक, स्लीप, ट्रैवल या फिर एक्सरसाइज या फिर कुछ और?
0: मैं अपनी लिसनर्स से बातें करती हूँ और उनको प्यारे प्यारे से गाने सुनवाती
1: क्या
0: हूँ
1: बात
0: और
1: है,
0: फुल
1: क्या बात है।
0: रिजुविनेट हो जाती हूँ।
1: तो दोस्तों इन सारी एक्टिविटीज का आप भी कर सकते हैं यूज, जैसे म्यूजिक हो या फिर आपकी कोई हॉबी हो जिसको करने से आपको अच्छा लगता हो। और इस वर्ड ऑफ द डे का भी यूज कर सकते हैं। क्या है वर्ड ऑफ द डे?
0: वर्ड ऑफ द डे है रिजुविनेट।
1: तो इसका यूज भी कर सकते हैं आप। अब हम जो है आपको फ्रेश फील करवाने के लिए ये गाना सुनाते हैं।

0: वैसे ये गाना क्या कहूँ, ऐसे गाने ना चलते ही बस एंजॉय करते जाओ और गाना खत्म ना हो, ऐसा लगता है अपने आप डांस जो है आ जाता है, उसके जो हुक स्टेप्स है वो अपने आप ही पता चल जाते हैं और
1: अपने
0: ऐसे
1: आप
0: मतलब
1: हमारी जो बॉडी है वो मूव करने लगती है।
0: हाँ ये गाना उसी में से एक है। वैसे ये गाना सुनकर तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो?
1: ये गाना सुनते ना मुझे ऐसा फील आता है कि कभी ऐसा कि मैं भी ट्रेन में हूँ और मुझे मेरा आदित्य वहां मिल जाए।
0: क्या पता मिल जाए, लेकिन कहाँ है हमारी किस्मत
1: सुनहरे सपने लड़कपन
0: बिल्कुल।
1: के।
0: और दोस्तों ऐसा होता है ना, मतलब जैसे डॉली अपनी ख्यालों में खोई हुई है, खुश हो जा रही है बिना वजह के, तो ऐसा है ना हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, मतलब एकदम फ्रेश फील करते हैं कि हाँ ठीक है,
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा लग रहा
1: विनीता
0: है।
1: एक बात बताओ, क्या खुश होने के लिए हर बार कोई प्रॉपर वजह होनी
0: नहीं
1: जरूरी है
0: बिल्कुल
1: क्या?
0: नहीं, लेकिन ऐसा होता है, और वजह तो अगर ना भी हो तो ढूंढ लेनी चाहिए भाई खुश होने के लिए, क्योंकि खुश तो हम खुद के लिए हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल, खुश होना तो वो अंदर से आता है ना वो चीज, और खुशी के लिए कोई पर्टिकुलर चीज थोड़ी ना होती कि ये चीज होगी तब मैं खुश होंगी, ऐसा थोड़ी होता है।
0: तो आप जरा हंस भी लिया करो, खुश रहा करो, और
1: और ये प्यारे प्यारे से गाने सुना करो, हमसे बातें करा करो।
0: बिल्कुल सुन

0: वेलकम बैक टू यू वानी. दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि दिन भर तो हमें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही सोने जाओ, अचानक से हमारा दिमाग पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगता है, क्या चीज़ें चलने लगती हैं. लाइफ के सारे प्लान्स, बिजनेस के आइडियाज, कुछ कविताएं, कुछ शायरियाँ, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग, कुछ भी चलने लगता है.
1: बिल्कुल. और रात में दिमाग ना थोड़ा सा अलग काम करता है, रात को डिस्ट्रैक्शंस जो है ना कम होते हैं.
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत शोर शराबा कम होता है, ट्रैफिक की नॉइस नहीं होती, लोग सोने चले जाते हैं, तो बेसिकली बहुत शांति होती है.
1: और तुम्हें पता है डॉली, कुछ लोग ना क्रिएटिव हो जाते हैं. कुछ लोग रात को अननेसेसरी वरीज जो है प्लान करते हैं और उसमें फंस जाते हैं.
0: बिल्कुल, देखिए जैसे कुछ लोग, जैसे म्यूजिशियंस हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनका दिमाग जब रात के 3-4 बजे होते, वैसे भी कहते हैं भी ये है ना कि वो ब्रह्म मुहूर्त टाइप का, उस टाइप का उसमें रहता है, वो एनर्जीज नेचर में रहती है, तो हम जो भी काम उस वक्त करते हैं वो बेस्ट, अपने बेस्ट लेवल पे कर पाते हैं हम.
1: और सब लोग है ना ऐसे ये सोच में पड़ जाते हैं कि रात ऐसे सोचते हैं सुबह जो है हम जिम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और ऐसी ही चीजें मतलब सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और सुबह उठते
0: वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है कहीं. बिल्कुल
1: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ
0: हाँ,
1: होगा.
0: बिल्कुल. अगर 3-4 बजे की बात करें तो दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है.
1: हाँ, और अपन मतलब कहीं ना अपन सारी चीज़ों से मतलब मोटिवेट, मतलब उस वक्त मोटिवेशन होता है हमारे अंदर, लेकिन जब सुबह तक उठते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार क्या सोच लिया मैंने, मुझसे नहीं होने
0: नहीं
1: वाला ये
0: नहीं
1: ना.
0: थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सोच लिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है. वो सारी जो प्रैक्टिकलिटी है वो हमारे दिन में जागती है, और
1: हाँ
0: रात को हम बड़े क्रिएटिव, बड़े डिल्यूजनल लेवल पे चले जाते हैं.
1: इसलिए कहते भी है कि रात को है ना मतलब बहुत ज्यादा शांति होती है, तो पढ़ाई वगैरह जो है अच्छे से मतलब हो सकती है, या
0: हाँ,
1: तो
0: वो लेट नाइट स्टडीज करते हैं ना बच्चे.
1: रात को या फिर सुबह जल्दी.
0: बिल्कुल, और इसका यही कंक्लूजन है विनीता, कि रात जो हमारा, जो हमारी लाइफ में है, वो हमारे दिमाग के लिए दुश्मन भी हो सकती है और दोस्त भी हो सकती है. तो
1: बिल्कुल
0: वो डिपेंड ये करता है कि हम उसको क्रिएटिव वर्क में लगाते हैं या ओवर थिंकिंग करने में लगाते हैं.

0: दोस्तों कैलाश खेर जी के ना बहुत सारे गाने, और सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो गाना है ना, इसकी एक अलग ही वाइब है, अलग ही फीलिंग्स छुपी हुई है इसमें. और जो लोग गाने को फील करते हैं ना, जो लिरिक्स को फील करते हैं, उनको जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है. क्यों डॉली?
1: बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो ये गाना है. देखो, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हर इंसान अलग होता है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग है, लेकिन सबके लाइफ में जो नंबर वन प्रायोरिटी है, किसी की फैमिली है, फ्रेंड्स है, या उनके जो भी रिलेशनशिप्स है लाइफ में, किसी के लिए काम उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. तो हर इंसान किसी एक चीज़ के लिए बहुत डेडिकेट होता है कि वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए.
0: कुछ भी,
1: तो वो लोग इस गाने को बहुत रिलेट करते
0: बिल्कुल.
1: होंगे.
0: और इसकी गाने के लिरिक्स ही उनको ही डेडिकेट कर सकते हैं अपन, जो जो है ना, मतलब एक इंसान, एक चीज़ या फिर अपने सपने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो और उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार हो, है ना.
1: बिल्कुल, तभी तो इस गाने में ये लिरिक्स है कि तेरी दीवानी, तेरी दीवानी.
0: फिलहाल हम युववाणी के दीवाने हो चुके हैं, तो अभी जो है वक्त जो है चला जा रहा है, चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सुनाते हैं ना आपको ये अगला ट्रैक.

0: कभी कभी ना दोस्तों हम सोचते हैं कि जो टाइम है जो वक्त है वो यहीं पर रुक जाए, और ऐसा हम सभी के साथ होता है। एक वक्त ऐसा आता है ना कि हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और सोचते हैं यार ये टाइम क्यों बीत रहा है, क्यों जा रहा है ये टाइम। काश एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए हम थोड़ा सा और जी लें इस टाइम को, इस वक्त को, इस टाइम में और कुछ खुशियाँ बटोर लें, थोड़ा सा और घूम लें, थोड़ी सी और बातें कर लें, थोड़ा सा और किसी के पास बैठें, और बस ये वक्त ना जाए।
1: बिल्कुल ऐसा वैसे भी नहीं तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमें ये लगे कि वक्त क्यों जा रहा है, यहीं रुक क्यों नहीं रहा है। क्योंकि वो ऐसा मोमेंट होता है कि हम फुल्ली अलाइव फील करते हैं और हम बाकी सारी चीज़ें भूल चुके
0: और
1: होते हैं।
0: उस वक्त टाइम कितना ज्यादा जल्दी, मतलब ऐसा लगता है कि यूं मिनटों में जो है टाइम जा रहा है, सेकंड्स जो है ना उसकी
1: हाँ,
0: स्पीड बहुत ज्यादा हो गई
1: और
0: है ऐसे जा
1: अगर यूं देखे तो एक एक मिनट भी हमें भारी लगता है।
0: और वैसे मतलब वो है कि वाइब मैच होनी चाहिए किसी के साथ, फिर तो आपको
1: बिल्कुल,
0: टाइम का पता ही नहीं चलता कब आपने 1 घंटे से 4 घंटे बिता लिए किसी के साथ।
1: क्या बात है, ऐसा बहुत कम बार होता है वैसे।
0: हाँ, और वो है ना दुनिया में मतलब एक ही इंसान होता है ऐसा, एक ही इंसान होता है ऐसा जिसके साथ हमें थोड़ा अच्छा लगता है या उसके साथ हमें टाइम का पता नहीं चलता। वैसे जो अगला गाना है ना वो उन्हीं में से किसी एक इंसान के लिए।

0: तो दोस्तों आज हमने सुने प्यारे प्यारे से गाने और की आपसे ढेर सारी बातें, जहां मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली और आज यहां मेरे साथ थी।
1: जी हां दोस्तों, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। आज के प्रोग्राम की परिकल्पना थी राजेश लामरोड की और कंसोल पर हमारे साथ थी मोनिका। दीजिए हम दोनों रेडियो बडीज को इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी सी शाम में और सुनाएंगे आपको चटपटे से बहुत सारे गाने। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

गुड इवनिंग जोधपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को, आपके रेडियो राही कल्याण विश्नोई का प्यार भरा नमस्कार। बहुत से गीत, बहुत सी बातें और बहुत सारी दूसरी जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर के कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। आप और हम मिलकर चलेंगे इस सुरीले सफर पर। श्रोताओं, जब भी गानों की बात आती है तो एक जनरेशन है जो 90s के गीतों को बहुत पसंद करती है और अक्सर वो ये भी कह देते हैं कि उसके बाद तो अच्छे गाने बनने ही बंद हो गए, पर ऐसा नहीं है। सुरीला संगीत हर दौर में रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। पर वो लोग जो कहते हैं कि 90s के बाद अच्छे गीत बनना बंद हो गए, उनके लिए लेकर के आया हूं मैं वो गीत जो अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं और वो 90s के बाद बने हैं।

पूछो तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उन गानों की जो 90s के बाद के दौर में बने और अपने शब्दों और अपने संगीत की वजह से बहुत फेमस हुए।

क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें सर्वोदय बुक स्टॉक।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना 2027 का काम अभी पूरे देश में चल रहा है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जनगणना के इस काम में अपनी तरफ से पूरा सहयोग दें और जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए वो जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ प्रगणक को जो है वो प्रोवाइड करें। आपके द्वारा दिए गए डाटा देश की भविष्य की नीति निर्माण में बहुत काम आएंगे। फिलहाल आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

जी आशुताओं, हम भी ये दुआ करते हैं कि फना हो सभी दूरियां। श्रोताओं, 90s के म्यूजिक की एक खास बात यह थी कि उस दौर में बहुत सारे एल्बम भी आए और एल्बम के गानों ने भी खूब धूम मचाई। लेकिन एल्बम आना उसके बाद भी बंद नहीं हुए। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एल्बम से ही, और खास बात यह है कि इस एल्बम के सभी गीत लिखने वाले गीतकार हमारे अपने जोधपुर शहर से थे। जी हाँ, इस एल्बम के गीत लिखे मशहूर गीतकार सईद कादरी ने। तो लीजिए, हाजिर है ये गीत।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो राही कल्याण विश्नोई। श्रोताओं, मौसम में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी बारिश, कभी आंधी, कभी धूप तो कभी लू। इस सब में ये मत भूलिए कि ये गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। साथ ही जिस दिन ज्यादा तेज धूप हो उस दिन बाहर निकलने से बचें। आप घर में बैठकर रेडियो सुन सकते हैं। और दिन ढलने के बाद जब शाम सुहानी होने लगे तब छत पर जाइए और बदलते मौसम का आनंद लीजिए। साथ रखिए अपना रेडियो सेट और सुनिए प्यारे प्यारे गीत।

श्रोताओं, 90s के गीतों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनमें रोमांस जो है वो एक एक हर्फ में भरा हुआ था। और प्रेमी जो युगल थे वो एक दूसरे को इस तरह प्रेम में डूब कर लिखे हुए गीत डेडिकेट करते थे। लेकिन इसके बाद भी रोमांटिक गाने खूब बने।

श्रोताओं, रोमांटिक गानों के साथ साथ इस दौर में दोस्ती पर भी खूब गाने बने। लेकिन दोस्ती के गानों की बात आती है तो नए दौर के गानों में इस गाने से सब गाने पीछे हैं।

0: जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, FM सन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो राही कल्याण विश्नोई। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उन गानों की जो 90s के दौर के बाद बने और उनमें 90s के गानों वाला वही फ्लेवर था। अच्छे बोल, अच्छा संगीत और अच्छी पार्श्व गायकी। ऐसा ही एक और गीत हाजिर करते हैं आपको।

श्रोताओं, बातें बहुत सी है और गीत भी बहुत से। कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर की आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, इस प्यारे संगीत के साथ ही गुड इवनिंग जोधपुर का टाइम यहीं समाप्त होता है। आपके रेडियो राही कल्याण विश्नोई का अनुमति दीजिए, हम फिर मिलेंगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे जयमाला, जिसे विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से रिले किया जाएगा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
1: संगीतकार रवि,
3: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। तो आइए सुने सुधा मूर्ति द्वारा प्रस्तुत ये विशेष जयमाला कार्यक्रम।
1: मैं सुधा मूर्ति बोल रही हूँ मुंबई से। मैं बचपन में जयमाला माने हमारे मुल्क के सैनिकों का एक गीत माला था, ऐसे ही मैं पली हूँ और मुझे बहुत याद है जयमाला।

के वक्त में हम बाहर खेलते थे, उस समय मैं आती थी सुनने के लिए, इसीलिए जयमाला ये मेरे बचपन का एक हिस्सा हुआ है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करती हूँ, कभी मैं वर्ड्स नहीं मिलता उस समय मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ। भाई ओ मुझे गर्व है, आप हमारे देश के बॉर्डर सब प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज यू पीपल प्रोटेक्ट अस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। आपका हार्ड वर्क

इंडिया. आपका हार्ड वर्क, इसका नतीजा हम देख रहे हैं. आप कितने हमारे देश के लिए त्याग बलिदान करते हैं और घर से दूर रह के भी हमारा हिफाजत करते हैं. इसीलिए मेरे तरफ से और देशवासियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए चाहती हूँ. चाइना के बॉर्डर एक बार गई थी, एक बार कश्मीर के बॉर्डर गई थी, एक बार पंजाब के बॉर्डर गई थी. ऐसा हमने 3-4 बॉर्डर देखे हैं एंड मुझे मालूम है लाइफ कितना मुश्किल होता है और आप अकेले होते हैं, लेकिन ऐसा सुंदर गाना आने के बाद आपको मन आनंद और उत्साह होता है वो भी मुझे मालूम है. इसलिए मैं गाने चुन लिया है, ये मेरी पसंद है, शायद आपका पसंद भी होगा ऐसा मुझे लगता है. पहले गाना है, इटालियन सीन होता है वेनिस नगर में. द नेम ऑफ द मूवी इज द ग्रेट गैम्बलर. अमिताभ बच्चन और जीनत अमान थे. द बोल बहुत सुंदर है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, वो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी शायद पसंद होगा. इसका बैकग्राउंड भी सुंदर है और इसका म्यूजिक भी जरा अलग तरीका से है, इसीलिए मैं पहले गाना आपके लिए दो लफ्जों की ये डेडिकेट करता हूँ.

दूसरा गाना है छूकर मेरे मन को किया तूने इशारा। इसका साहित्य भी अच्छा है, इसका वो संदर्भ भी अच्छा है। मेरा गला अच्छा नहीं, नहीं तो मैं वो ट्यून करके बोलती थी, लेकिन मुझे बोल का अच्छा मालूम होता है, लेकिन ट्यून नहीं आती है। ये भी सुंदर गाना है।

मैं कभी कभी हिंदी सिनेमा देखती हूँ, उस समय मुझे जवानों की सिनेमा बहुत पसंद लगते हैं। हम दोनों ऐसा एक सिनेमा था, हम बचपन में देखे थे, उसमें देवानंद ने मिलिट्री में जाता है और दो पार्ट किया है उसमें, बहुत सुंदर है और उसके गीत बहुत बहुत सुंदर है, और जयदेव का म्यूजिक था हम दोनों में, अल्लाह तेरो नाम भी उधर है, और मुझे ये पसंद हुआ था अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, साधना वो प्रेमिका के किरदार की ऐसा है और देवानंद नौजवान आर्मी ऑफिसर का है। आपको शायद ये गाना पुराना लगेगा लेकिन इसका बोल भी सुंदर है और माहौल भी बहुत सुंदर था उस समय, म्यूजिक इज टॉप क्लास, इसीलिए मैं आपके लिए डेडिकेट करती हूँ।

हिस्से ऐसे आ गए कि ऐसा हुआ तो मैं क्या करती हूँ, और डिस्करेजिंग सिचुएशन आती थी उस समय में आपके लिए मैं सोचती थी हाउ अ सोल्जर विल प्रोटेक्ट अवर कंट्री इन दरास, उधर टेम्परेचर -42 -51 तक हो जाता है, वो एक दृढ़ मन से उधर रात भर खड़े रह के हमारा कंट्री के और हमारा देश का वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो कर सकते हैं तो हमारा तो उतना मुश्किल काम नहीं होता है। इसीलिए आपको देख के मैं करेज लेती हूँ और मैं दरास गई थी, उसने मुझे लगा आप कैसे रह सकते हैं इतना बर्फ है ये है, लेकिन वो आपके अंदर क्या है वो देश प्रेम है ना, आप जैसा भक्ति सबको नहीं आता है, इसीलिए आपको मैं सलाम करती हूँ। बहुत प्यारे राग है हिंदुस्तान में मालकाउंस है, मालकाउंस के बहुत गाने हैं, एक है मालकाउंस के राहुल देशपांडे और महेश काले का कानाडा राधा पंडरी सब, ये भी बहुत सुंदर मालकाउंस है, और बैजू बावरा में एक मालकाउंस का बहुत सुंदर मन तड़पता रहे हरि दर्शन को आज, मीना कुमारी और भरत भूषण का मैं आज आपके लिए ये पेश करती हूँ।

0: धारवाड़ एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वो धारवाड़ की हूं मैं। हमारे प्रदेश में किराना घराना है, हम कभी भी संगीत सीखने के लिए बाहर नहीं गए, लेकिन वो किराना घराना के गीत संगीत राग बचपन से ही वो हमारे कानों के ऊपर पड़ता था, इसीलिए हमने जरा ज्ञान ऐसे ही हमने सीख लिया। हमारे गांव से बहुत सारे अच्छे गायक हैं, हीराबाई बडोदेकर वो भी किराना घराना के थे, और हमारे गंगूबाई हानगल थे, भारत रत्न भीमसेन जोशी हमारे किराना घराना के हैं। हम छोटे थे ना उस समय, हम पूछते थे हमारे पिताजी को कैसे मालूम होना चाहिए भैरवी राग, वो बोलते थे भैरवी माने विदाय सेपरेशन, और उसमें दर्द भी होना चाहिए प्रेम भी होना चाहिए। वो गाने सुनने के बाद आपके मन में कैसा होता है कि दर्द आता है और विरह का वो फीलिंग भी आता है और प्रेम भी होता है, वो गाना होता है भैरवी। हमारे पिताजी ने मुझे पहचानने के लिए मदद किया है, वो मैंने सिनेमा से पहला भैरवी राग मैंने सीखा, कैसे आओ जमुना के तीर। बाद में मुझे मालूम हो गया कैसे आओ जमुना के तीर, जैसे ही हम सुनते हैं वो दर्द भी मालूम होता है प्रेम भी होता है विरह भी होता है। और फेमस सिंगर पंडित जसराज जी और कविता कृष्णमूर्ति भी सुमिर न करो मेरे मना, ये सब गाने भैरवी के हैं, लेकिन आज मैं हमारे फौजी भाइयों को कैसे आओ जमुना के तीर, बहुत सुंदर भैरवी है ये, देवता सिनेमा का है। आपको लगेगा शायद मैं सब पुराने गाने ही बोलती हूँ, लेकिन पुराने गाने में एक मिठास था और एक राग का छाया था, मन को किधर भी वो छूता था। मुझे सुमधुर सरल गंगा जैसा बहते हुए संगीत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज्यादा आपको ऐसे ही गाना मैं सुनाती हूँ। ये बहुत अच्छा गाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: कैसे

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।
2: रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। तो आइए सुने इस कार्यक्रम का शेष भाग।
3: मैं बहुत हिंदी सिनेमा देखती हूँ, अंग्रेजी कम देखती हूँ। मुझे हिंदी सिनेमा से बहुत लगाव है और एक बार मैं पुणे में थी, कोई मुझे बता दिया कि अरे हर रोज सिनेमा देखने के लिए होता है क्या, ये नामुमकिन है। हमने बताया ऐसा नहीं है, मन है तो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक बेट लिया, बेट लेके एक साल में 365 दिन होते हैं, मैंने उतना सिनेमा देखा, क्योंकि मुझे सिनेमा के गाने से बहुत प्यार है। राज कपूर के सब सिनेमा, गुरदत्त के सिनेमा, मराठी प्रभात सिनेमा, ऐसे बहुत सिनेमा देखा है। मुझे अच्छा, वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड मूवी बहुत पसंद है, वो है मासूम, नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी का। और उस समय बाल नटी थी उर्मिला जी, उसमें एक गाना है बच्चों के लिए है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे बच्चों के लिए भी मैं वो गाती थी, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, वो बच्चों के लिए भी अच्छा है और सिनेमा भी बहुत अच्छा क्वालिटी का था। इट वॉज ओरिजिनली फ्रेंच सिनेमा था, मैन वुमन एंड दी चाइल्ड, और वो नॉवेल भी थी उसके ऊपर, वो हिंदी में मासूम किया, लेकिन बहुत बेहतरीन किया है। उसका गाना मुझे अच्छा लगता है और बच्चों के लिए तो बहुत उत्साहदायक गाना है वो, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा।

राजेश खन्ना हमारे जमाने में बहुत मशहूर एक्टर थे और बहुत सुंदर काम भी वो किया, आनंद हो चाहे अमर प्रेम हो चाहे आराधना हो, और बहुत सारे वो फिल्म अच्छा किए और उनके गाना भी बहुत अच्छे थे। हमने सुना है उनको राग का ज्ञान था, इसीलिए वो अच्छे अच्छे गाने उनके सिनेमा में डालते थे। एक सिनेमा बहुत अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, उत्तम कथा चाहिए और अद्भुत संगीत चाहिए, एंड ऑफकोर्स अच्छा डायरेक्टर एक्टिंग ये सब चाहिए। अमर प्रेम में एक गाना है वो राग तोड़ी और खमाज का एक बहुत सुंदर गाना है, वो है रैना बीत जाए, लता मंगेशकर जी ने गाया है। लता मंगेशकर माने क्या, वो संगीता सरस्वती, उनसे सब गाने एक से एक अनमोल थे। और एक गाना मुझे बहुत हार्ट टच किया क्योंकि उधर शर्मिला टैगोर की असहायकता, राजेश खन्ना के अश्योरेंस और वो माहौल, गंगा के किनारे उनका घर बहुत सुंदर है।

मैं एक बार स्टूडियो में गई थी इंटरव्यू के लिए और उनको लगा अभी सुधा मूर्ति माने सीनियर लोग हैं, सीरियस होते हैं, सोशल वर्क करते हैं, इसीलिए शायद वो भजन गिजन ऐसा चुनेंगे। और हमने बताया मेरे गाना मैं ही चुनती हूँ। उनका लगा मैडम है ज्योति कलश झलके ऐसा कुछ। हमने बोला नहीं, हमको अच्छा वाला गाना चाहिए। सर वही अच्छा है। सर नहीं, 1958 में दिलीप कुमार और वैजयंती माला का एक सिनेमा था, उसका नाम है मधुमती। और उस सिनेमा में एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर गाने थे, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा। अभी शिलोंग का एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा आता है उसमें भी है वो एवरग्रीन सॉन्ग है दिल तड़प तड़प के कह रहा है, और आजा रे परदेशी है। मुझे अच्छा लगा, बिछुआ बिछुआ बहुत सुंदर है वो गाना, सब गाने सुंदर थे उसमें। और हमने बताया वो अनाउंसर को, नहीं 50 में एक गाना मैं बोलती हूँ, 60 में एक बोलती हूँ, मुगल आदम को बोलती हूँ मैं, 70 में एक बोलती हूँ, 80 में ऐसा मैं गाना चुनती हूँ क्योंकि मैं गाना सुनती हूँ। इसीलिए हर सुबह मैं वॉकिंग जाती हूँ, उस समय मैं FM रेडियो सुनती हूँ, आकाशवाणी से चुनती हूँ। आकाशवाणी का गाना भी बहुत अच्छे होता है, और 7 to 7:30 शास्त्रीय गाना सिनेमा में उसे हमने राग पहचाना, वो मुझे बहुत मदद किया। संगीत सरिता और विविध भारती का ऑल प्रोग्राम्स ये बहुत मुझे पसंद है। पर्टिकुलरली व्हेन आई गो फॉर वॉक, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी से बात करूं, ये करूं, फोन पे बात करूं, नहीं, मैं सिर्फ संगीत सुनती हूं। मुझे मालूम भी नहीं होता है एक घंटा कैसा चल गया। इसीलिए मुझे सिनेमा का संगीत और शास्त्रीय संगीत का ये सम्मिलन क्या होता है उसको सुनने के लिए मन लगता है। मेरे लिए वो गाना बहुत अच्छा है, बिछुआ बिछुआ, ये आपके लिए मैं पेश करती हूँ।

0: जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने, तो आइए सुने इस कार्यक्रम का शेष भाग।
1: मैं सुबह सिंपल राग, मेलोडियस राग और शांत राग ऐसे मुझे पसंद होता है, और उसमें है पहाड़ी एक राग है। सुनने के बाद मुझे लगता है मेरा मन एक पहाड़ में है, उसमें ग्रीनरी है, उसमें पानी है। वो राग पहाड़ी मुझे बहुत पसंद है। वो नूरी सिनेमा में एक सॉन्ग था, ओ चोरी चोरी कोई आए, ओके, और राग पहाड़े का बहुत सुंदर गाना है, आपके लिए मैं पेश करती हूँ।

हमारे अम्मा स्कूल टीचर थे और हमने हमारे बता दिया कि आप देश के लिए कुछ करना चाहिए। 1962 में आप सब लोग मालूम भी नहीं कैसा था उस समय, करंट कट करते थे, इसीलिए हमने अम्मा ने बता दिया सब लोग 8 बजे के पहले खाना खा के पढ़ाई करके सोना, देश के लिए करंट बचाना, मुझे याद है। और मेरी नानी थी वो बताई मुझे देश के लिए कुछ करना है, हमें मालूम नहीं था क्या करना है। मुझे वो कि अंगूठी दी थी, हमने बता दिया कि ये अंगूठी मैं देश को दे दूं, वो बताई हाँ दे देना। मुझे पास एक ही था अंगूठी सोने का और वो नेशनल फंड में मैंने दे दिया। ये पहला दान है। और बाद में मेरा लड़का रोहन वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो अमेरिका में पढ़ता था, उस समय पार्लियामेंट में अटैक हुआ और हमारे मारे गए उधर 13, हमारे पुलिस लोग लगते हैं मुझे, और वो मुझे एक खत लिखा, अम्मा वो दो 13 पीपल डाइड सो दैट यू कैन लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में, सो यू शुड गिव मनी एटलीस्ट वॉट एवर यू कैन गिव टू ऑल दोस 13 फैमिलीज। उस दिन मुझे गर्व हुआ क्योंकि हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाना का उतना मुश्किल नहीं होता है, वो पढ़ के वो क्या संस्कार मन में रखते हैं, वो संस्कार कैसे आप वो इस्तेमाल करते हैं, मेरे लड़का से मैंने वो सीखा और सुना। बहुत गर्व हुआ मुझे, मुझे लगा मैंने अच्छा शिक्षण दिया है उनको। मेरी नानी ने, मेरी माँ ने मुझे उत्तम शिक्षण दिया कि छोटे उम्र में देश के लिए कुछ करना है। और बच्चों को देश प्रेम के बारे में हम बोलना चाहिए क्योंकि देश प्रेम हुआ तो ही देश बचता है, किसी को मिला है। अशोक चक्र कैसे वो बलिदान किए हैं, कितने छोटे उम्र में वो किए हैं, ये सब हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ वो पाठ्य पुस्तक में भी वो हम डालना चाहिए एक चैप्टर।

द पीपल हु लुक आफ्टर अवर कंट्री. और बच्चों को बोलना चाहिए एक बार आप आके देखे उनके जीवन कैसा होता है, वो बॉर्डर कैसे देखते हैं, कैसे वो कष्ट लेते हैं, किसके लिए लेते हैं. और हम उनके ऊपर गर्व होना चाहिए और हमें भी उनका दायित्व भी होना चाहिए, हम उनके लिए काम करना चाहिए. हम लास्ट बट द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस सीरीज मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, वो बॉर्डर सिनेमा का संदेश से आते हैं और ये सच्ची स्टोरी है, इसीलिए मुझे हृदय को ये ज्यादा पसंद है. और भाइयों मेरे चुने हुए गानों का आपके लिए डेडिकेट किया है, आपको अच्छा लगा तो बता देना, कोई गलत हुआ तो माफ करना, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. दैट डजंट मीन माय लव फॉर माय कंट्री इज लेस, माय लव फॉर कंट्री इज ऑलवेज देयर, बट लैंग्वेज में भी वीक. धन्यवाद.

था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे हर्ष पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 48 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के जैसलमेर में भी तकरीबन इतना ही तापमान देखने मिला है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तप रहा है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से बचकर लोग रात का इंतजार तो करते हैं, लेकिन अब मौसम ने कुछ ऐसी करवट ली है कि रातें भी राहत नहीं दे रही हैं। देश के कई हिस्सों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, यानी सूरज ढलने के बाद भी शरीर को ठंडक नहीं मिल रही है। वो दौर आपको याद होगा जब दिन भर की कड़ी धूप के बाद लोग रातों को छतें धोते थे और वहां गद्दे बिछाकर खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में सोने का आनंद लिया करते थे। लेकिन अब वो दिन हवा हुए, क्योंकि हवा तो गर्म हो गई है ना। पंखे और कूलर के बावजूद अब लोग सो नहीं पा रहे हैं, शरीर को आराम नहीं मिल रहा है, सुबह उठते ही थकान महसूस हो रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की तकलीफ वाले मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल भारत में इस बरस गर्मी पहले से कहीं ज्यादा लंबी, उमस भरी और खतरनाक होती चली जा रही है। Why India's heat waves feel more brutal than before? Climate Trends ने ये रिपोर्ट जारी की है जो भारत के एक खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक ऐसा दमघोटू जाल गर्मियां बुनती चली जा रही हैं जिससे निकलने के रास्ते बंद हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक घर के अंदर का तापमान अगर लगातार 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो दिल, दिमाग, नींद और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार रात में गर्मी दिन से ज्यादा खतरनाक होती है। जब रात में तापमान कम नहीं होता तो शरीर को खुद को ठंडा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों और बीमार लोगों पर पड़ता है। साल 2010 से 2014 के बीच रात के औसत न्यूनतम तापमान में हर दशक में 0.21 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 36 में से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रातें लगातार

लगातार गर्म हो रही हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये बढ़ोतरी कहीं ज्यादा तेज हो रही है। इसलिए अब लोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हीट स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत का कोर हीट वेव जोन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जो अब पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो चुका है। इसमें शामिल हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। लू की आवृत्ति और अवधि इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक सन 1961 से अब तक लू की आवृत्ति हर 10 सालों में 0.1 दिन बढ़ी है। इस तरह से लू का प्रकोप अब भयानक होता चला जा रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी का जो असर है वो पड़ रहा है खेती पर। बिजली की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। मजदूरों और काम करने वालों की काम करने की क्षमता कम हो रही है। अस्पतालों पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पाकिस्तान के सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म और उत्तर पश्चिमी हवाएं देश के मध्य हिस्से में पहुंच रही हैं। इन हवाओं ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य भारत को भट्टी में बदल दिया है। ऊपर से शहरों में बढ़ता कंक्रीट, बढ़ती आर्द्रता और मिट्टी से गायब होती नमी, इन सब ने गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 2015 से 2025 तक के 11 साल दुनिया के सबसे गर्म साल रहे हैं, ये बात बताई है विश्व मौसम संगठन ने। विशेषज्ञों के मुताबिक जब हवा में उमस ज्यादा होती है तो पसीना जल्दी नहीं सूखता और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ऐसे में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी 50 डिग्री जैसी महसूस होती है। इस तबाही को बढ़ाने में हमारे आधुनिक शहर अपना योगदान कर रहे हैं। भारत के शहर अब अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं। दिन के समय डामर की सड़कें, कंक्रीट की ऊंची इमारतें और पेड़ों की घटती संख्या सूरज की पूरी गर्मी को सोख लेती है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि भारत के कई शहरों का तापमान ग्रामीण इलाकों की तुलना में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो रहा है। इससे समझ में आता है कि कैसे मौसम का संतुलन लगातार बिगड़ता चला जा रहा है और जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। आठ जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। महासागर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये हमारे कौतूहल का केंद्र तो है ही, लेकिन ये धरती के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों में पेड़ पौधे, कई प्रजाति के जीव और ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक ये धरती के तापमान को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर दिवस मनाने का मकसद ये है कि हम महासागरों के महत्व को जानें। महासागरों से कई तरह की दवाएं भी हमें मिलती हैं। महासागर धरती के अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। दुनिया के महासागर धरती के 70% हिस्से को ढांके हुए हैं। हमारे मौसम, ऑक्सीजन और अरबों लोगों के जीवन का आधार हैं ये महासागर। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे मान्यता दी। तब से हर साल ये दिन मनाया जाता है। शुरू में इसका विषय था हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। वैश्विक स्तर पर 30x30 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है महासागरों को लेकर। 30x30 के लक्ष्य का मतलब है पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि सच्चाई ये है कि आज केवल 8% महासागर ही संरक्षित हैं। जाहिर है इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। समंदर सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं है बल्कि वो धरती के तापमान को नियंत्रित करते हैं, 50% ऑक्सीजन देते हैं और दुनिया के हर तीसरे इंसान की रोजी रोटी इनके जरिए चलती है, चाहे मछली पालन हो, टूरिज्म हो या समुद्री कारोबार। लेकिन जरा सोचिए कि हर साल 80 टन प्लास्टिक समंदर में जा रहा है, हद से ज्यादा मछलियां मारी जा रही हैं और एसिड लेवल बढ़ने की वजह से कोरल रीफ तबाह हो रहे हैं, मूंगे के पहाड़ खत्म हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कई समुद्री प्रजातियां हमारी आंखों के सामने

ने गायब हो जाएंगी। भारत ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है जो समुद्र और नदी दोनों में डॉल्फिनों को बचाने के लिए केंद्रित है। इसके अलावा भारत का डीप ओशन मिशन हर साल 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है जिसमें गहरे समुद्र में शोध खनन और जलवायु संबंधी अध्ययन शामिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महासागरों का कितना महत्व है हमारे जीवन में।

साल 2026 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल 23वां फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला जा रहा है और संयुक्त मेजबानी 16 शहर कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर इसमें शामिल हैं, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहर। ये टूर्नामेंट 3 देशों द्वारा आयोजित होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है और इसमें पहले की 32 टीमों की तुलना में 48 टीमें शामिल होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर आपको बता दें कौन से हैं जहां पर ये फुटबॉल मैच खेले जाएंगे। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मेटलाइफ स्टेडियम जो फाइनल का आयोजन स्थल भी है, लॉस एंजलिस का सोफी स्टेडियम, डालास का AT&T स्टेडियम, अटलांटा का मर्सिडीज बेंज स्टेडियम, सिएटल का ल्यूमेन फील्ड, ह्यूस्टन का NRG स्टेडियम, सेंट फ्रांसिस को बे एरिया का स्टेडियम, फिर बोस्टन, मायामी, फिलाडेल्फिया और कंसास सिटी के स्टेडियम इसमें शामिल हैं। मेक्सिको के 3 शहर हैं, मेक्सिको सिटी का स्टेडियम, मोंटेरे का स्टेडियम और ग्वाडालाजारा का स्टेडियम। कनाडा के 2 शहर हैं, टोरंटो, वैंकूवर मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा 11 जून 2026 को मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एजटेका स्टेडियम में और फाइनल मुकाबला होगा 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क या कहें न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में। IPL खत्म हो चुकी है और अब फुटबॉल के इस महाकुंभ का बुखार सबको अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार फीफा विश्व कप के लीग स्टेज के सभी मुकाबले रात 9:30 बजे शुरू होंगे और अगली सुबह 9:30 बजे तक अलग अलग वक्तों पर खेले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल के दीवानों की रातों की नींद तो गई समझिए। 11 तारीख को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा लेकिन भारत के दर्शकों के लिए पहला मैच 12 जून को आधी रात के बाद 12:30 बजे शुरू होगा। समझ गए ना आप? फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से शुरू होगा। दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप माना जा रहा है। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। चलिए उन 5 खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में दागे हैं सबसे ज्यादा गोल। मिरोस्लाव क्लोस, जर्मनी के खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2014 से लेकर 2022 के बीच 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है और इस दौरान 24 मुकाबलों में उनके दागे गए गोलों की तादाद है 16। 2002 से 2006 में क्लोस ने 5-5 गोल दागे थे जबकि साल 2010 में 4। अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। और अब रोनाल्डो की बात। ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में है सेकंड नंबर पर। द फिनोमेनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए हैं 19 मुकाबलों में। 2002 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागे थे। ब्राजील को चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। जस्टिन फोंटेन फ्रांस के खिलाड़ी 1958 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना मुश्किल नजर आता है। जस्टिन ने इस वर्ल्ड कप में अकेले 13 गोल किए थे। सबसे बड़ी बात यह कि ये 13 गोल केवल 6 मैचों में किए थे। ये रिकॉर्ड आज तक कोई फुटबॉलर तोड़ नहीं पाया है। लियोनेल मेसी साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में हैं 4th नंबर पर। मेसी ने 2006 से 2022 के बीच फीफा वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल

किए हैं। कतर में खेले गए आखिरी वर्ल्ड कप में मेसी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5वें नंबर पर हैं किलियन एम्बापे। कतर में हुए आखिरी वर्ल्ड कप में भले ही अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी, लेकिन एम्बापे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। फाइनल में एम्बापे ने अपने विरोधियों को भी अपना दीवाना बना दिया था। कुल 14 मुकाबलों में 12 गोल उन्होंने किए हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में 8 गोल किए थे और गोल्डन बूट अपने नाम किया था। ये है एम्बापे का कमाल। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल का बुखार है, वो सबको अपनी चपेट में लेगा और सब फुटबॉल के दीवाने बनते चले जाएंगे। हमारी भी नजर रहेगी और जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको ये बताते रहेंगे कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है और कौन कौन सी टीमें ऐसी हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। दोस्तों, ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका है ममता सिंह।
1: शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भर कर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए, एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का ये कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा भला दूसरा कौन है। जाने दो, रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है, मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा। बहू तुम किसी बात को सोचो मत। बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा हूँ ना।
2: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगीं। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। अब क्रिया कर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन

परिश्रम न करना पड़ेगा, इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजूरी करो और मैं मालकिन बन बैठूं? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा, बैठे बैठे

होना ही आ पहुँचे। उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वो निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वो कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था, फिर उसे बंद कर ये ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दराजों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वो कोठरी कोई तिलिस्म का रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थीं। आज राम प्यारी को ये रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडारा खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत इसने भला क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ इसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगने पर दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से यहाँ विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसी झुनिया खड़ी है और एक रुपया मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो एक पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रिया कर्म में सब खर्च हो गया है। झुनिया चकरा गई, चौधरी के घर में इस समय एक रुपया भी नहीं है? ये विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वो सब कुछ क्रिया कर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने ये बहाना किया होता तो उसे अचरज न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर ही शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही की तो बात है, उसने जानकी को शेर भर दूध दे दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगने पर दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गढ़े में पढ़कर आई हूँ, नहीं तुम जानती हो मेरी तो आदत ही नहीं है मांगने जांचने की। बाकी का एक रुपया देना है, प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह ये विपत्ति टले, मैं आज के आठवें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन है जहां मैं मांगने जाऊं? प्यारी टस से मसन हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपाड़ लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनों में झाव झाव होती तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है, अब वो घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकल कर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ो दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा?
द्वार ऐसा चिकना चाहिए कि देख

कर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कि उपकाई आने लगे, अभी कह दूं तो तुनक उठेंगे। अच्छा कि मुन्नी नान से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नान में झांका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता है कि चार घड़ा पानी नांद में डाल दे। मजूर रखा है, वो भी 3 कौड़ी का। खाने को 1.5 सेर, काम करते नानी मरती है नानी। आज आते हैं तो पूछती हूँ, नांद में आखिर पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहे, जाना हो जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। शिवदास ने पुकारा, अरे बहू, पानी क्या होगा, इसमें तो पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो, कोस भर दूर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए, किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कसती थी कि सभी पुर्जे ठीक ठीक काम करने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है, न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीजें मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी सदस्य दिखाई देते हैं। अब वो पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चीथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वो प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी ये सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और, दोनों बहनों में भी उतना अपनापन नहीं है। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ से काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंस कर कहा, जोड़ जोड़ के रखती हूँ तो तेरे लिए ही, कि मेरा कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूट पड़ा है। दुलारी बोली, तुम न खाओ पहनो, लेकिन जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती, मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। हाँ, प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ कड़े। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को 2-4 खरी खोटी सुना जाते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंस कर सहती थी। स्वामिनी का तो ये धर्म ही है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का भी असर न होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों में और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है बेचारी। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है बेचारी। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई।

ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका थी ममता सिंह, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। हम आपको बता दें इस कहानी का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सुनो कहानी में। सुनो कहानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। फिल्म रेड 2 से ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में

लवयापा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और जारा एस खान की आवाज में। तनिष्क बागची ने म्यूजिक दिया था और गुरप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था।

श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल को आप सुन रहे थे धड़क टू इस फिल्म से। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

अरमान मलिक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सागर भाटिया ने इसे लिखा और उन्हीं का म्यूजिक था। दे दे प्यार दे टू, ये था फिल्म का नाम। और इसके साथ ही आज के ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में

0: अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

फिल्म का नाम था घर। लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए प्रोग्राम में अगली पेशकश।

मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तेरे घर के सामने फिल्म का नाम था। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए,

0: फिल्म था वक्त। आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: वाह।
3: कभी सुपर

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

शहर हो, कोई हसीन शाम हो या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

मोहब्बत है क्या चीज, बस कुछ तैरते हुए साए, कुछ ख्वाबों के घरों दे और हवाओं पे लिखे हुए कुछ प्यार भरे पैगाम।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं,
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की जयप्रकाश को आज्ञा दें। नमस्ते।
1: वीको टर्मरिक विथ फोम बेस मिटाए ऑयली स्किन, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स हर वॉश के साथ। पाइए क्लियर, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन नेचुरली। वीको टर्मरिक विथ फोम बेस, बेहतर त्वचा का एक नेचुरल उपाय।
2: इस कार्यक्रम की प्रायोजक थी वीको टर्मरिक विथ फोम बेस, बेहतर त्वचा का एक नेचुरल उपाय। वीको

0: श्रोता, हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra